0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर

0: जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपण ऐकत आहात आकाशवाणीच्या कोल्हापूर केंद्राचं हे प्रसारण। श्रोते 6:05 आणि 45 सेकंद झाली आहेत। भक्ती संगीताचा कार्यक्रम प्रसारित करत आहोत अमृतधारा।

0: योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित, और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल

0: और परफेक्ट एंड गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषय शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्रीमान मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
2: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
1: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
3: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
4: We have seen the comments.
5: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
4: Regulate the flow of foreign funds.
1: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
4: While we are coordinated,
5: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
1: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार

0: छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
3: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, क्योंझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
4: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथानामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
5: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के OPD में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार।

0: वृक्ष से चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही तीन विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के तीन विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर जल भराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी एफएम सेवेचं हे कोल्हापूर केंद्र आहे। सकाळचे 8:15 वाजलेत। सुगम संगीताचा विशेष कार्यक्रम प्रसारित करत आहोत, स्वरांजली।

हिल पोरी हिला तुझे कप्पा लीला टीला आगो हिल हिल पोरी हिला तुझे कप्पा लीला टीला तुझे कप्पा लीला टीला तुझे कप्पा लीला टीला गो फैशन मराठी सोबई तुला।

आइए सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की इबारत विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट हो चुकी है और आप सभी ने पढ़ी ही होगी। जिन श्रोताओं ने फेसबुक पोस्ट नहीं देखी है उनके लिए इबारत यहां पेश है। इतने दिन कहां थे, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, ये कैसी बातें कर रहे हो। घनी थी उलझन बैरी अपना मन, अरे खुलकर कहो ना, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, ओफो कहना क्या चाहते हो, मुझको अभी चुप रहने दो, पहेलियां बुझाना छोड़ो ना, हम क्यों शिकवा करें झूठा, अरे किससे शिकवा हुआ है, क्या बात है, इंसान मोहब्बत कर बैठा, पर ये तो अच्छी बात है ना, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है, फिर वही, अरे खुलकर कहो ना, कहने से हो मलाल तो हम क्या जवाब दें, देखो ये ठीक बात नहीं है, इस तरह उलझी बातें कौन करता है, बातें हैं बातों का क्या, हाय इतना दुख मेरी तो आंख भर आई, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, अब तुम हद कर रहे हो, अपनी तो यह आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, चुप रहो, अब ऐसी बहकी बहकी बातें की तो बातें बंद हो जाएंगी हमारी, समझे भाई, यही है आज की इबारत। और इस इबारत में बहुत सारे गाने, बहुत सारे शब्द समाये हुए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने बाकायदा गानों को एक अच्छी तरीके से पहचान भी लिया है, लेकिन एक जो नहले पे दहला आया है उसे कार्यक्रम में सबसे पहले शामिल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक इबारत लिखी है, क्या बात है बड़े छाए हुए आजकल, क्यों आपको पसंद नहीं है, हमें क्यों पसंद नहीं होगा, आखिर आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, वही तो हमारे लिए आप श्रोतागण ही सब कुछ हो, बस इसी बात ने तो हमारा दिल छीना है। विविध भारती से एक संवाद, एक कमाल है भाई, कमाल है, यानी नहले पे दहला मार दिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे श्रोताओं की बातें, एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि यादों की महफिल में बहुत ही बढ़िया गाने आपने सुनवाए, इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा कर देते हैं आपका। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता हैं, जरा देखें कि हमारे और श्रोता क्या कह रहे हैं। कुछ श्रोता हैं जिन्होंने बाकायदा पूरे गानों की लिस्ट प्रदान कर दी है और यहां भेजा है। इसके अलावा कई ऐसे श्रोता हैं जो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि इतने दिन तो हम कहीं नहीं थे, विविध भारती के संग थे और ऐसे ही विविध भारती हमारे साथ चलती रही, गुनगुनाते रहे, दिल पर राज करते रहे, सुकून देते रहे। एक और श्रोता कहते हैं शिकवा नहीं, किसी से गिला नहीं, हम विविध भारती सुनते रहे तो दिन खुशनुमा रहे। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अप्रत्याशित थीम है और बहुत ही मजेदार गाने सुनाई देने वाले हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि यादों की महफिल में गाने अच्छे सुनाई दिए थे। एक श्रोता ऐसे हैं जो बाबा अमरनाथ कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप बालटाल में हैं और वहां से आगे रवाना हो रहे हैं। शुभकामनाएं आपको हम सबकी तरफ से। और वहां भी आप अगर विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम का सिलसिला इस गाने के साथ। और आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या आम बोलचाल की भाषा में आप भी गानों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर करते हैं तो

योगेश का लिखा ये गाना मुकेश की आवाज सलील चौधरी की तर्ज आनंद फिल्म, और एक श्रोता ने ये कहा है कि ये गाना पूरी तरह से राजेश खन्ना के साथ जुड़ा हुआ। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज जो पहला गाना आपने बजाया सुरीला सफर कार्यक्रम में वो मेरे दिल के बहुत करीब है, पतिदेव इस गाने को बहुत अच्छे से गाते थे, पहला गाना यही था जो उन्होंने मुझे गाकर सुनाया था। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि योगेश जी क्या बात है, बेहतरीन आगाज इस कार्यक्रम का हुआ है और हम तो अपनी बातचीत में अक्सर ही फिल्मी गीतों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि हम भी बातें करते हैं तो गानों का और फिल्मी डायलॉग्स का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो पूरे दिन कोई ना कोई गाना गाते रहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में भी गाने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा हमारे अस्तित्व का आईना है, व्याकरण की दृष्टि से भले शुद्ध ना हो। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बोलचाल की भाषा में गाने तो आजकल मुहावरे की भूमिका अदा करते हैं, जैसे अगर कोई देर से आया तो हम कहते हैं बड़ी देर भाई नंदलाला। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं हम अभी इसी गाने को सोच रहे थे और ये गाना प्रसारित हो गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम अभी से घोषित कर देते हैं कि आज का जो सबसे प्यारा गीत है वो यही है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज जो है प्रश्न पत्र का स्वरूप कुछ बदला हुआ लग रहा है, लेकिन ये बदलाव बहुत अच्छा है। इसके अलावा

और श्रोताओं की बातें शामिल करते हैं। देखिए, कई श्रोता ये कहते हैं कि हमारे कमेंट्स शामिल नहीं होते। इतनी लंबी धारा कमेंट की है कि मैं एकदम एकदम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे गानों के बोल हमारे कई श्रोताओं ने लिखे हैं। अब सभी श्रोताओं के लिखे गाने के बोल बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप सभी के प्यार का शुक्रिया। इतना सारा टाइप करके आपने भेजा, अपने गानों को बिल्कुल ठीक पहचाना है। और एक श्रोता ये कह रहे हैं कि जैसे ही पेज खोलकर सुबह देखा, उस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था, इबारत पढ़कर चाय और नाश्ते का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और मुझे याद आया कि कैसे किशोर कुमार की याद के दिन आपने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती बड़े काम की चीज है, कहीं दूर से गम आ जाए, रेडियो से मेरा मन बहल जाए, या रेडियो बजाओ दुनिया वालों या मुझे अभी चुप रहने दो। क्या बात है, इन्होंने अपनी तरह से इबारत लिख दी है। अब जो गाना आ रहा है वो आप सभी के दिल के बहुत ज्यादा करीब गाना है, और ये जो फिल्म है ये हम सभी को बहुत ही अपनी सी लगती है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री, एक दूजे के लिए। ये फिल्म आपने किस साल में, कहां, किसके साथ देखी थी, ये यादें हमारे साथ जरूर बांटिए। और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है? क्या आपके शहर में बारिश की फुहारें पड़ रही हैं, या अभी तक आप गर्मी से जूझ रही हैं? शनिवार की दोपहर 1:12, क्या हाल आपके और आपके शहर के मौसम के?

एक श्रोता ये लिखती हैं कि एक दूजे के लिए जब रिलीज हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी, थिएटर में देखी होगी पर याद नहीं है, लेकिन बाद में टेलीविजन पर देखा। जैसे जैसे बड़े हुए इस फिल्म के गानों का जादू सिर चढ़कर बोला, एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज से परिचित हुए और 16 बरस की बाली उम्र से खुद को कनेक्ट किया। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ये गाना दिल के बहुत करीब है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि मिर्जापुर शहर में जब से सावन का महीना लगा है दिन रात झमाझम बारिश हो रही है, इस समय थोड़े बादल और थोड़ी सी धूप है, खुशनुमा मौसम है हमारे शहर का। और इसके अलावा फिलीपींस के एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहां तो 3 दिन से बारिश हो रही है और रेड अलर्ट का सिग्नल आ चुका है। एक और श्रोता ने क्या सुंदर जुमला गाने में सुठाया है, दुनिया में प्यार की एक है बोली, सलाम आनंद बख्शी साहब, क्या बढ़िया लाइन लिखी है। इसके अलावा एक और श्रोता लखनऊ से लिख रही है कि सूर्य देव तीक्ष्ण ताप बरसा रहे हैं, भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके शहर में भीषण वृष्टि हो और तीक्ष्ण ताप की जगह शीतलता आप पर हावी हो जाए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो पानी पानी पानी हो गया है, भाई ये जो पानी पानी पानी है इससे मुझे ऐसा लगा जैसे आप गा रहे हैं गाना आज ब्लू है पानी पानी पानी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रही है कि ये गीत मन की गहराई में बसा हुआ है, प्रेम के कितने रंग हैं और सादगी भरे बोल इस गाने का आभूषण है। एक श्रोता अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं गाड़ी से और गाड़ी में सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, सभी लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, उनके परिवार के बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें ये जानकर। बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई ये जो लिफ्ट वाला गाना है मेरे जीवन साथी प्यार किया जाए, ये बड़ा ही अच्छा लगा था। 1981 में कॉलेज से भागकर दोस्तों के संग पहला शो मैटिनी शो देखा था। अब ये जो कॉलेज से भागकर फिल्म देखने की बात है ना, बस मुझे लगता है कि इसी बात की डोर पकड़ के आगे चलते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज से भागकर पिक्चर देखी थी, कॉलेज से भागकर कौन सी फिल्म देखी थी और क्या किसी को पता चल गया था। और हाँ, अब रेशमा की आवाज गूंज रही है, फिल्म का नाम हीरो, सुभाष घई की बेमिसाल फिल्म जिसमें आए थे जैकी दादा। ये फिल्म कहां, किस शहर में, कब, किसके साथ, चोरी से या शाम से देखी थी बताइएगा।

एक श्रोता है जिन्होंने बहुत ही मजेदार बात लिखी है। वो लिखते हैं कि भाई फिल्म हीरो हम लोगों ने कॉलेज से गोल मारकर देखी थी, अब साथ में कौन था ये बात प्लीज मत पूछिए वरना बहुत मार पड़ जाएगी। ठीक है भाई, ये मत बताइए कि साथ में कौन था, लेकिन कॉलेज से भाग कर देखी है, ये बड़ी मजेदार बात है। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की यादें देखी साझा की हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि दोस्तों के साथ खुदा गवाह देखने गई थी कॉलेज से भागकर, बहुत मजा आया था और हम पकड़े नहीं गए थे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि मिथुन दा की फिल्में तो नहीं देखी लेकिन कैसेट बहुत बजाया करते थे, ये एक बात इन्होंने लिखी है। उसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लंबी जदाई का की बड़ी तारीफ की है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि क्या गजब करें, सुरीले सफर कार्यक्रम में आपके सारे राज खुलवा देंगे, यहां मेरे बेटी बेटे दामाद बैठे हुए हैं। अच्छा हुआ कि आप नाम नहीं लेते, वरना ये जो कॉलेज बंक करके फिल्में देखने की लिस्ट तो लंबी है। अच्छा हुआ कि इस कार्यक्रम में नाम नहीं आता, वरना सबको पता चल जाता कि हमने क्या किया था अपने जमाने में। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि शहर में थोड़ी सी बारिश भी बहुत अधिक हो जाती है, हम किसानों से पूछो अभी तक धरती में पानी ठीक से अंदर पहुंचा नहीं है और हम मजबूर हैं भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए। आप शहर वाले थोड़ी सी बारिश हुई तो हाथ जोड़ लेते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश गिरी, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि इतनी बारिश हो कि जो खेती है वो अच्छी तरीके से हो सके। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी किसी गीत को हम केवल सुनते नहीं बल्कि वो हमारे भीतर घटित होता है। इस गीत को सुनकर लगता है कि हमारे भीतर एक अंतहीन बयाबान पसरा हुआ है, रेशमा की आवाज सबसे उदात्त पलों में ले जाकर छोड़ देती है। एक और श्रोता जो लिख रहे हैं कि मैंने मंदसौर रतलाम और

जैन में बहुत सारी फिल्में देखी हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये राज उजागर कर दिया है कि कॉलेज से भागकर उन्होंने रफू चक्कर देखी थी, सहेलियों के साथ कॉलेज बंक करके। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि कॉलेज से भागकर अगर फिल्म देखते तो कहीं फिल्म देखने के काबिल न रहते उस जमाने में, क्योंकि पापा आर्मी में थे और आर्मी थिएटर में 365 फिल्में जरूर देखी सिकंदराबाद में। इसके अलावा एक और श्रोता जलंधर से हैं, वो कहते हैं कि जलंधर के लाल रतन सिनेमा हॉल में हमने फिल्म हीरो देखी थी। एक और श्रोता है

0: लिए उन्होंने 1982 में जुबली टॉकीज में देखी थी। किस शहर का की बात है ये आप अंदाजा लगा सकते होंगे, मैं तो समझ गया हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट लिया कि हमारे शहर में बादल ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादी में मुंह फुलाए फूफा घूमते हैं, नजर तो सबको आते हैं मगर काम के नहीं होते। भाई बहुत ही प्यारा कमेंट है। और अब एक ऐसे गाने की तरफ ले जा रहे हैं जो दिल के गुबार को उजागर करता है, जिसमें उदासी लिपटी हुई है। एक बेहतरीन फिल्म का एक शानदार गाना है ये।
1: दीवानों से ये मत पूछो।
0: क्या आप बता सकते हैं इस गाने के गीतकार कौन हैं? इस फिल्म में कई गीतकारों ने गाने लिखे थे, पर ये गाना किसका?

एक श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत ईश्वर का खूबसूरत तोहफा है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं, बस नीरसता रहेगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत एक सुंदर एहसास है जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मोहब्बत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मेरी तो माँ ही प्रिंसिपल थी, इसलिए 15 अगस्त से काफी पहले गतिविधियां शुरू हो जाती थी, नाट्य गीत नृत्य कहानी सभी की प्रैक्टिस हुआ करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी ने मोहब्बत के बारे में इस गाने में अच्छा भी लिखा है और बुरा भी लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज आपको आना था और हमें बिल्कुल मिस नहीं करना था, बच्चे आ गए और हम थोड़ा बिजी हो गए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो अमिताभ बच्चन के पक्ष में हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज नहीं मिलती तब तक वो बड़ी अनमोल होती, मिल जाने पर वो बेमोल हो जाती है। बचपन के 15 अगस्त की तैयारियां क्या खूब हुआ करती थी, कई दिनों पहले से ही मन में तिरंगा लहराने लगता था, स्कूल की सफाई, रंग बिरंगे कागजों से सजावट, प्रभात फेरी की तैयारी और हाथ में थामे छोटे से झंडे का गर्व, बिल्कुल अलग तरह का उत्साह होता था। एक और श्रोता, बचपन में 15 अगस्त की बड़ी भोर को अगल बगल के घरों से फूल तोड़कर जमा करके स्कूल ले जाते थे ताकि तिरंगे में बांधे जा सके। राष्ट्रगान के पश्चात मैं वीर रस गाने में मूल गायन करता था, हेडमास्टर से शाबाशी मिलती थी। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो सवाल आपने पूछा है, बहुत उत्साह से तैयारी करते थे, आज भी याद है, अपना स्कूल ड्रेस शूज सभी को धोकर तैयार करके हैंगर पर टांग कर रख देते थे, कब सुबह हो और जल्दी से तैयार होकर जाएं, और बूंदी के जो लड्डू मिलते थे यूं लगता था कि खजाना मिल गया।

0: है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि 15 अगस्त को देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता होती थी और हम बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक और श्रोता कह रही हैं कि सुबह से इस गाने को याद कर रही थी पर यह याद नहीं आ रहा था। एक और श्रोता का कहना है कि 15 अगस्त के दिन नृत्य की प्रैक्टिस किया करते थे और मोतीचूर के लड्डू आज भी उन्हें याद आते हैं। इसके अलावा साहिद लुधियानवी के बोलों की तारीफ हमारे कई श्रोताओं ने कही है और इस गाने में एक ऐसी तपिश है जो दिल को पिघला देती है। एक और श्रोता शिकायत करती है कि भाई हर रोज हमारे काम करने का जो वक्त है वो मुकर्रर होता है लेकिन जिस दिन आप आते हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में हमारा पूरा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। भाई माफी चाहते हैं लेकिन सुरीला सफर में आना छोड़ नहीं सकते हम। आप अपना टाइम टेबल पूरी तरह से बिगाड़ कर रखिएगा और हम आते रहेंगे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि हेमंत कुमार की आवाज गंभीरता और मिठास लिए हुए हैं और 15 अगस्त की तैयारियों के बारे में तो बस श्रोताओं के कमेंट लगातार चले आ रहे हैं और बहुत ही उमंग और उत्साह की बात। एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल अलग तरह का कमेंट लिखा है, वो कहते हैं कि बारिश और ठंडी ठंडी सुबह होती थी तो 15 अगस्त के दिन नहाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए ये क्या हुआ,
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ।
0: क्या आप आम जिंदगी में इस गाने का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से, कब, जरा हमें बताइए।

एक श्रोता कहते हैं कि मेरी लिस्ट का ये सातवां गाना भी बच गया है, यानी आज की इबारत में से उन्होंने बहुत सारा अंदाजा लगा रखा था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत बार जब सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, तो हम कहते हैं ये क्या हुआ। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब कोई चीज गुम जाती है तो मैं अक्सर गाता हूं ये क्या हुआ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इस धरती के अनमोल रत्न से विभूषित किशोर कुमार, भाई किशोर कुमार की तारीफ करें। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ये क्या हुआ गाना बज रहा है, बादल छाए बस बारिश होने वाली है। एक और श्रोता एनसीसी में थी और वो कह रही हैं कि जो खाने का पैकेट मिलता था वो बहुत ही शानदार होता था। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई ये तो हमारा तकिया कलाम है, ये क्या हुआ जब तब हमारी जबान से ये निकल जाता है। और इसके अलावा कुछ और श्रोताएं 15 अगस्त की यादें, वो समूह गान, सब कुछ याद आ गया है। और एक श्रोता है जो लिखती हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे स्कूल में परेड होती थी और हजरतगंज तक पैदल ही हम सब परेड में भाग लेते थे। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत यादें अपनी बांटी हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि एक दिन पहले ही सुबह 3 बजे नींद खुल जाती थी कि कल बूंदी वाले लड्डू मिलेंगे। भाई हाईलाइट है ये, बूंदी वाले लड्डू जो है ये सबके लिए एकदम कॉमन बात है। कितनी सारी यादें श्रोताओं ने साझा की हैं। और अब देखिए क्या प्यारा गाना साहिर लुधिया

ये लिखती हैं कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, ये गाना जमाने की हकीकत को दर्शाता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज अगर संवेदना कम होती चली जा रही है तो उसकी एक वजह मोबाइल फोन है। और इसका एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि भाई सचमुच आज संवेदनाएं बहुत कम होती चली जा रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सहानुभूति होती तो है पर आज के लोग उसे व्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप में इतने गुम रहते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि आज का वक्त ऐसा है कि किसी को किसी के पास वक्त नहीं है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संवेदनाओं में 100% की कमी आई है। तो बहुत सारे श्रोता ये मानते हैं कि आज संवेदनाओं में लगातार कमी आती चली गई है। एक और श्रोता है जिन्होंने 15 अगस्त की सुहानी याद के बारे में अपनी बात ये लिखी है कि मैं कक्षा छठी में थी और मुझे भाषण देने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन उस दिन मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया और मैं तो रो पड़ी थी। भाई देखिए, ये भी एक याद जो है वो उभर कर सामने आ गई। एक बहुत ही जज्बाती गाना अब आपके लिए, आपको बताना है कि हमने ये किस फिल्म से लिया है।

लता मंगेशकर की आवाज, बहू बेगम फिल्म का ये गाना। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात पहचान ली है और एक श्रोता लिखते हैं कि आज किसी की खुशी या परेशानी में रील बनाना लोगों को ज्यादा पसंद आता है। और इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आज लगातार जज्बात की कमी होती चली जा रही है। आखिरी गाना ये रहा। मदन मोहन और लता मंगेशकर के कॉम्बिनेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये बताइए।

भाई आज के कार्यक्रम का वक्त यहीं खत्म हो रहा है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में साथ निभाया और सवालों के जवाब दिए, कमेंट्स किए, गाने सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग बने रहिए, क्योंकि विविध भारती देश की सुरीली धड़कन है। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

त्रिवेणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 8 अगस्त की तारीख कैलेंडर की कोई आम तारीख लग सकती है, लेकिन भारत के इतिहास में ये तारीख सुनहरे अक्षरों से लिखी हुई है। भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था, क्रिप्स मिशन नाकाम हो चुका था, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन जारी था जहां महात्मा गांधी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इस तरह से भारत की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान। आज

0: भी भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति की याद दिलाता है। जन जन में रोष था, आक्रोश था और ऊर्जा थी, बुलंदी थी कि किसी भी तरह से अब देश को आजाद करना ही है। मुंबई से जो लहर शुरू हुई थी उसने धीरे धीरे पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया। अब गांव गांव, शहर शहर बस एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो

भारत छोड़ो आंदोलन का सिनेमा पर क्या असर पड़ा, इसकी एक मिसाल ये गाना है जो अभी आपने सुना। कवि प्रदीप ने जब ये गाना लिखा तो उन्हें अंग्रेज सरकार ने तलब किया और आरोप लगाया कि ये गाना ब्रिटिश विरोधी गाना है, पर उन्होंने बड़ी चतुराई से तर्क दिया कि ये गाना ब्रिटिश विरोधी नहीं बल्कि ब्रिटिश समर्थक गाना है। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। टॉकीज़ों में फिल्म को रोक रोक कर नौजवान बार बार इस गाने को दिखाने का अनुरोध करते थे। ये गाना जनमानस पर छा गया था। पूरे देश में अंग्रेजों का बहिष्कार किया जा रहा था, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, बच्चे हों या नौजवान या बुजुर्ग। भारत के कोने कोने से लोग सड़क पर निकल आए थे। महात्मा गांधी

के आह्वान पर बस ये तय कर लिया था कि अंग्रेजों को खदेड़ कर ही दम लेंगे, और इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आजादी का आखिरी बड़ा आंदोलन बना, जिसने इस देश की बुनियाद रखी, जिसने इस देश को तरक्की के रास्ते पर लाया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आजादी बहुत ही मुश्किल से, त्याग से, बलिदान से और बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद हमें हासिल हुई है। इस आजादी का मोल हर पीढ़ी को समझना होगा।

0: संभाल के।
1: कोई भी देश अपनी सीमाओं से नहीं बनता, अपनी ऐतिहासिक इमारतों से नहीं बनता, अपने इतिहास से भी नहीं बनता। देश बनता है जनमानस से, उसकी जनता से और उसकी जनता की चेतना से। अगर हम सचेत रहें, जागरूक रहें, देश के प्रति जिम्मेदार रहें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें, खासकर अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह करते रहें, तो ये माना जाएगा कि हम अपने आजादी का मोल समझ रहे हैं, हम अपनी आजादी की कीमत चुका रहे हैं, हम देश के प्रति अपनी निष्ठा को ठीक तरीके से निभा रहे हैं। हम बहुत छोटे छोटे काम बहुत निष्ठा के साथ कर सकते हैं, जैसे हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बिजली और पानी को व्यर्थ ना जाने दें, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसे बहुत छोटे छोटे काम हैं जो हम करें तो देश के लिए एक बड़ा योगदान हो सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन की याद के इस दिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रति जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है।

8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और आज त्रिवेणी में हमने आपको याद दिलाया कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या है और ये आजादी इतनी अनमोल क्यों है। तो अब इजाजत दीजिए, यूनुस खान को नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है।

0: और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती हैं और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कम्प्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की

0: मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
2: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा

0: आंध्र प्रदेश में अगले तीन दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
2: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जम्मू कश्मीर में

0: के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। SH बिहारी की वो लोपी फिल्म है ये रात फिर ना आएगी।

गुलजार के बोल हेमंत कुमार की तर्ज उन्हीं की आवाज, सन्नाटा फिल्म का ये गाना था। इससे पहले सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी की आवाज थी, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर की तर्ज थी। एक आवाज जिसमें है जोश जुनून।

आ रहे हैं विविध भारती पर। बारह अगस्त दिन में और रात में 11 बजे आप सुन रहे हैं सदाबहार रेडियो।

मेरे साया फिल्म का यह गीत आपने सुना, आशा भोसले की आवाज में था। राजा मेहंदी अली खां की बोल थी, मदन मोहन की तर्ज थी।

विविध भारती पर आप मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और अब जो गाना आ रहा है उसके लिए आप सभी के खत मिले हैं। अल्लिया नगर केंड गांव से भाऊ साहेब नवथर अक्षय चंदन जय कुमार चंदन रुचिता चंदन और इनका परिवार। ये चिट्ठी है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक कुमार श्याम कुमार प्रमिला चीनू आसमा दीपक अनुश्री और पूरे श्याम कुंवर परिवार की और बहुत ही रंग बिरंगी चिट्ठी राजेश वाघमारे प्रिया वाघमारे रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे की जूना तारफेल अकोला महाराष्ट्र से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद

0: तेरी कसम आऊंगा।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम, और मनचाही गीत कार्यक्रम में देश भर से हमारे श्रोता लिखते हैं चिट्ठियां और इंतजार करते हैं अपनी चिट्ठियां शामिल होने का और अपने गानों का। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता, ग्राम खकल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, अंशराज गुर्जर और इनका पूरा परिवार, रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और बाबू भाई महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं, और गणेश पेट पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या श्लोक और भैया, और ये श्रोता हैं सिंधी कैंप की खोली अकोला महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा संतानी, नैन्सी संतानी और सुमित संतानी, ये सभी सुनना चाहते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है, फिल्म है मशाल।

और अब मंचाई गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बहू बेगम फिल्म का गीत साहिर लुधियानवी के बोल रोशन की तर्ज और आप सभी की फरमाइशें चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया और बीबी आरजू जाजोरिया वरुण जाउलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे निखिल साखरकर रोहित सुनीता अरविंद साखरकर और पूरा परिवार मालेगांव जिला वाशिम से और कबीर रेडियो श्रोता संग बालोद छत्तीसगढ़ से डॉली बेबी पूजा तमूरिया राधिका प्रभा देवी अजय देव देव शंकर तुषार देव तमूरिया

0: नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बैनर्जी। तो सुनिए नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग।
1: केशव कहाँ चला गया? केशव, केशव, वो तीसरी घंटी हो गई और केशव से कहोगी अनाउंस करे। हाँ है ये लेखक की तुम केशव ठाकर, अभी आया पाटिल जी, जाके अनाउंस क्यों नहीं कर रहे?
2: जहाँ
1: केशव कहाँ जा रहे हो? माइक्रोफोन तो ये रहा।
2: सॉरी सॉरी माइक्रोफोन ठीक हो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मीन नमस्कार देवियों और सज्जनों। हाँ तो नाट्य मंच अपने नए नाटक के प्रथम प्रदर्शन के अवसर पर आप सबका सहर्ष स्वागत करता है और आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है हास्य प्रधान नाटक किसी एक फूल का नाम लो। सज्जनों सज्जनों शांत, इसके लेखक हैं केशव ठाकर और निर्देशक जगन्नाथ पाठक। सज्जनों सज्जनों सुनिए सुनिए, कलाकारों का भूमिकाओं सहित परिचय इस प्रकार है। कांता कामनी देसाई, प्रमोद प्रमोद जगन्नाथ पाठक, भाभी स्वाति सोनी। सज्जनों शान और सुनिए, नंदलाल प्रीतम सोनी, निरंजन सुंदर देसाई और देश पांडे केशव ठाकर। सज्जनों तो अब प्रस्तुत है नाट्य मंच का ये नाटक किसी एक फूल का नाम लो।

0: हेलो, कौन? नंदलाल भाई? हाँ, मैं कांता बोल रही हूँ। सुनिए, प्रमोद आज फिर झगड़ा करके दफ्तर चला गया है। हाँ, आज रात अगर आप हमारे यहाँ आ सके ज्योत्सना भाभी को लेकर तो ठीक रहेगा। हाँ, प्रमोद को खुद फोन करके बता दे, निरंजन को मैं बता दूंगी। अच्छा, रात को जरूर आइएगा। बाय।
1: कहो मेरी जान।
0: ओह, तुम आ गए निरंजन। आज रात को फैसला हो जाएगा। मैंने नंदलाल भाई और भाभी को बुलाया है।
1: सच मेरी कांता?
0: आओ, सब आ जाओ, आज मेरी अर्थी उठ रही है, रोने वालों की जरूरत होगी। नंदलाल भाई आओ, ज्योत्सना भाभी आओ, निरंजन तुम भी आओ।
2: आखिर हुआ क्या कांता?
3: अरे नंदलाल, मैं बताती हूँ, असल में कांता और निरंजन।
4: नहीं नहीं नहीं, ये बात झूठ है, हम प्रेमी नहीं है।
2: प्रमोद, तुम ये क्या टाइप कर रहे हो?
5: आज जहाँ दंगा होने वाला है नंदलाल भाई, उसी को खत्म करने के लिए मैंने अपना ये घोषणा पत्र तैयार किया है। तो सुनो, आई प्रमोद पटेल, हस्बैंड ऑफ माय मोस्ट बिलवड वाइफ कांता पटेल, मैडम नेम कांता गोस्वामी, डू हियर बाय डिक्लेयर।
3: अरे प्रमोद भाई सुनिए ना, मैं तुरंत अनुवाद कर सकती हूँ। लाइए अपना कागज, मुझे दीजिए, मैं पढ़ती हूँ।
5: ठीक है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
3: अच्छा, तो प्रमोद भाई कहते हैं, मैं प्रमोद पटेल, कांता पटेल का स्वामी, घोषणा करता हूँ कि मेरी किसी समय प्यारी पत्नी कांता मेरे विश्वास पात्र दोस्त निरंजन को चाहती है, इसलिए आज फला साल के फला महीने की फला तारीख को अपनी मर्जी से, अपनी अक्ल से, मैंने अपनी जान देने की घोषणा की है।
5: मुझसे सुनो मेरी घोषणा। मैं प्रमोद पटेल अपनी सारी ताकत जुटाकर कांता के छिपाए हुए पिस्तौल से आत्महत्या करता हूँ। अलविदा, अलविदा।
0: मुझे विश्वास हो गया है कि।
5: कैसा विश्वास?
0: कि तुम मुझे प्यार करते हो।
5: फिर भी मैं अपनी घोषणा पर
0: अटल हूँ। प्रमोद रुक जाओ, इस पिस्तौल से मैं ही मरूंगी। लाओ पिस्तौल मुझे दो।
5: कांता, ये पिस्तौल मुझे दो।
4: तुम्हारा संसार उजड़ने के पहले मैं ही इस पिस्तौल से।
0: खबरदार निरंजन, तुम मेरे जीवन में तो आए पर अब मेरे और मेरे पति के बीच में मत आना, वरना अभी इस पिस्तौल से।
4: ठीक है, पहले मुझे मार डालो, मेरी दुखी आत्मा को शांति दो। कांता, कांता मुझे गोली मार दो, वरना मैं तुम्हारे हाथ से पिस्तौल लेकर आत्महत्या कर लूंगा।
0: सर, तुम मुझे इतना प्यार करते हो निरंजन।
5: कांता, कांता तुम मुझे ही मार डालो, मुझे ही मार डालो, या पिस्तौल मुझे दो, मैं अपने आप ही मर जाऊंगा।
6: तुम दोनों प्रेमी जियो और खुश रहो।
2: सुनो प्रमोद, तुम्हारी पत्नी यदि दूसरे को चाहती है तो इसमें मरने की कोई जरूरत नहीं। मुझसे शादी करने से पहले मेरी इस पत्नी ज्योत्सना को किसी दूसरे से प्यार था।
3: हैं? नंदलाल, इस रहस्य का तुम्हें पता था?
2: तुम्हारा प्रेमी देश पांडे थोड़े दिन हुए वो मेरे पास आया था पैसों के लिए।
5: कैसे पैसे?
2: ब्लैकमेल के पैसे।
3: लेकिन ब्लैकमेल किस लिए?
2: उसके पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं।
3: है?
5: कितने रुपए मांगता है वो?
2: सौदा आज पक्का होगा, वो आता ही होगा यहाँ।
5: यहाँ?
2: हाँ, मैंने देश पांडे को यही का पता दिया है, और अब प्रमोद, कांता और निरंजन तीनों से मेरी प्रार्थना है, देश पांडे यही आ रहा है, तुम में से जो भी मरना चाहता है वो उसे मारने के बाद मरे, तो मैं उसका एहसान मानूंगा।
4: प्रमोद, तुम्हारा इरादा मुझे मारने का हो तो रुक जाओ, मैं देश पांडे का खून करूंगा और इस तरह फांसी पर लटककर

0: जानता, मान लो कि
1: प्रमोद मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम अपनी जिद छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी
0: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है। ओह कितनी देर हो गई।
1: दफ्तर जा रहे हो प्रमोद? जाओ।

0: तुम्हारी और नंदलाल की दुनिया आबाद कर जाऊंगा।
1: शायद देशपांडे आ गया, मैं दरवाजा खोलता हूं।
2: नहीं, तुम यही रुको प्रमोद, तुम्हारा शायद भागने का इरादा है, दरवाजा मैं ही खोलूंगी।
3: कांता, अपना पिस्तौल मुझे देती जाओ, उस चांडाल का मैं खून करूंगी।
0: ये मेरा घर, मैं ही उसका खून करूंगा। तुम्हें करना हो तो उसे अपने घर ले जाओ।
1: लो वो आ गया।
4: आप सबको नमस्कार, माफ कीजिए, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन।
5: गुड इवनिंग मिस्टर देशपांडे। ये सब मेरे मित्र हैं। ज्योत्सना, तुम तो इन्हें मिस्टर देशपांडे को जानती हो?
3: हाँ हाँ।
5: और प्रमोद, कांता, निरंजन, ये है मिस्टर देशपांडे, जिनका खून कौन करे इस बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। हैं? सब लोग एक पंक्ति में क्यों बैठ गए?
0: आखिर बात क्या है नंदलाल?
5: तुम्हें नहीं, मैं इस थिएटर हॉल में बैठे हुए दर्शकों को सब बताता हूं। देवियों और सज्जनों, अभी थोड़ी देर पहले प्रमोद, कांता और निरंजन एक दूसरे के लिए आत्महत्या करना चाहते थे, एक दूसरे से अपना खून कराने के लिए जोर दे रहे थे। और अब सवाल है मिस्टर देशपांडे के खून का। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि ये रहस्य नाटक है। इस नाटक के सभी पात्र यहां मौजूद हैं। आप विद्वानों में से कोई भी ये बता दे कि किसका खून होगा और कौन खून करेगा, तो उसकी अक्ल की मैं दाद दूंगा। आपको बस इतना बता दूं कि खून इनमें से ही किसी एक का होने वाला है और इनमें से ही कोई करेगा भी।
3: नंदलाल, मेरे हाथ में ये पिस्तौल देख रहे हो ना, मैं तुम्हारी तिकड़मों से तंग आ चुकी हूँ। अरे, हम सबको कठपुतली की तरह नचाने वाले, मैं तुम्हारा खून करती हूँ।
5: अरे ज्योत्सना, ये क्या कर रही हो?
3: भाभी,
5: ये पिस्तौल असल है,
3: मेरे
5: असली।
2: भाभी, ये पिस्तौल मुझे दो।
3: क्या कर रही हो तुम?
2: हट जाओ भाभी। शेखर खोसला, शेखर खोसला।
6: अरे भैया, शिखर खोसला कौन था?
2: सीट पे बैठा था वो।
3: अरे भैया, गाली उसने बैठा था, गोली लगते ही ढेर हो गया।
6: गोली चलने वाली वो एक्ट्रेस कौन सी?
2: अरे वो मन की मशहूर एक्ट्रेस कामिनी देसाई थी। कामिनी देसाई,
6: कामिनी देसाई। अरे अरे अरे, वो कांता का रोल जो कर रही थी वही।
7: मैं सच कहूंगा, पूरा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
8: आपका नाम? उम्र? काम?
7: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, उम्र 33 साल, काम नाटकों में अभिनय करना।
8: सरकारी वकील अब दवा से गिरा कर सकते हैं।
7: थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर पाठक, आप मुलजिमा कामिनी देसाई को जानते हैं?
9: जी हाँ, हमने कई नाटकों में एक साथ अभिनय किया है।
7: कुछ और?
9: मतलब?
7: कामिनी देसाई आपकी प्रेमिका है?
9: जी जी हाँ, कामिनी देसाई मेरी प्रेमिका है।
7: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, क्या यह भी सही है कि आप दोनों अगले महीने की 15 तारीख को शादी करने वाले थे?
9: जी जी हाँ।
7: 15 को ही क्यों?
9: वो हम लोग एक नया नाटक तैयार कर रहे थे और उम्मीद थी कि नाटक सफल होगा और उसकी आमदनी में से हम हनीमून के लिए कुछ पैसे बचा सकेंगे।
7: ये नाटक कब हुआ?
9: पिछले महीने की 1 तारीख को।
7: नाटक का नाम क्या था?
9: किसी एक फूल का नाम लो।
7: उस नाटक में आप दोनों के अलावा और किन

0: इसमें हंसने की क्या बात है, छोटा सा रोल है, बहुत मजा आएगा। हा?
1: सुंदर से पूछ ले।
0: आता ही होगा सुंदर फिर।
2: जी मेरा नाम सुंदर देसाई, उम्र 30 साल, काम नाटकों में अभिनय करना, मुलजमा कामनी देसाई उसको मैं जन्म से जानता हूँ सर। हम सब नाटकों में काम करते हैं, किसी एक फूल का नाम लो नाटक में हम सब ने काम किया था। कामनी देसाई मेरी सगी बहन है सर, सगी बहन।
3: आप दोनों साथ रहते हैं?
2: जी हाँ, मैं कामनी और मेरी माँ तीनों साथ रहते हैं।
3: तीनों साथ रहते हैं। कामिनी ने जिसका खून किया उसके बारे में आप क्या जानते हैं?
2: जी नहीं, उसके बारे में मैं पहले कुछ नहीं जानता था। उसके मरने के बाद जाना कि उसका नाम शेखर खोसला था और वो किसी बड़ी फर्म का मालिक था।
3: उस नाटक में हत्या की घटना थी और उसमें पिस्तौल की जरूरत थी, ठीक है?
2: जी हाँ, लेकिन पिस्तौल में गोली नकली भरनी थी।
3: जगन्नाथ पाठक और कामनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये आप जानते हैं?
2: जी हाँ, पाठक मेरा पुराना दोस्त है, हमने बहुत से नाटकों में एक साथ काम किया है। कामनी और पाठक ज्यादातर नायक नायिका का काम करते थे और जाहिर है।
4: सच सच कह दूं ना कि तुम्हें अपनी बहन कामनी और पाठक की शादी की बात पसंद नहीं थी?
2: जाहिर है, तुम दोनों में प्यार है और तुम शादी करोगे।
1: सुंदर, पाठक का कहना है कि मेरा इससे शादी करना तुम्हें पसंद ना होगा।
2: बिल्कुल पसंद नहीं होगा।
5: सुन लिया कामनी?
2: अरे वो तुम्हारा प्रीतम लाल नहीं आया?
5: तुम उसे प्रीतम लाल क्यों कहते हो?
0: अरे लगता है प्रीतम सोनी आ रहा है।
1: लेकिन वो तो अकेला ही आ रहा है।
5: प्रीतम, स्वाति सोनी कहाँ है?
6: आती होगी, वो सीधी आने वाली थी।
0: अजी स्वाति जरूर आई ही ना।
2: सुंदर, अरे पाठक यार डांटते क्यों हो? मान लिया तुम इस नाटक के डायरेक्टर हो, लेकिन
7: रिहर्सल में अनुशासन जरूरी है। आई वॉन्ट डिसिप्लिन आई से।
0: अरे यार मैं स्वाति से शादी का प्रस्ताव नहीं करने वाला हूँ।
8: जी मेरा नाम प्रीतम लाल, कंचनलाल सोनी, उम्र 42 साल, काम अभिनय। जी कामनी को मैं 7-8 साल से जानता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं मरने वाला कौन था। मेरा ख्याल है कामनी पाठक के प्यार में।
3: आपने ये कैसे मान लिया?
8: कामनी ने मुझसे कहा था कि पाठक उससे शादी नहीं करेगा तो वो आत्महत्या कर लेगी।
3: अच्छा, पिस्तौल चलाने की बात नाटक में लिखी हुई है क्या?
8: जी हाँ, नाटक में नंदलाल ये कहता है कि
3: मिस्टर प्रीतम, अच्छा ये बतलाइए कि पिस्तौल में असली गोली कैसे आई?
8: जी जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। कामनी भोली होने के कारण कई बार उत्तेजित होती, पर किसी को उससे बैर हो या उसे किसी से बैर हो ये नहीं माना जा सकता।
3: आपकी पत्नी स्वाति सोनी और?
8: जी
9: मैं स्वाति सोनी हूँ, पति का नाम प्रीतम सोनी, उम्र 37 साल, व्यवसाय गृहिणी का, और कभी कभी अपने पति प्रीतम के साथ नाटक में काम करने का। कामनी मेरी पक्की सहेली है, लगता है किसी ने उसे फंसाया है। मैं तो मान भी नहीं सकती कि उसने ऐसा किया होगा, इसमें जरूर कोई धोखा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती।
3: रोने की जरूरत नहीं, सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए। क्या ये सच है कि कामिनी और पाठक के बीच प्यार था?
9: जी हाँ।
3: कामिनी को किसी और से भी प्यार था?
9: जी हाँ।
3: हाँ या ना?
9: जी इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकूंगी।
3: क्या मतलब?
9: कामिनी एक सफल अभिनेत्री है, उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं, वो एक भावुक स्त्री है और स्त्री का हृदय।
3: बस बस, ठीक से सोचकर जवाब दीजिए। आप बता सकती हैं पाठक और कामिनी की शादी करने पर क्या किसी को एतराज था? पाठक की कामिनी के सिवाय कोई दूसरी प्रेमिका थी या नहीं, और कामिनी का पाठक के सिवाय कोई दूसरा प्रेमी था या नहीं?
9: मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ।
3: याद रखिए आपने हल्फ उठाया है।
9: हाँ जानती हूँ, मैंने हल्फ उठाया है, पर मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कह सकती।
3: एक सवाल, आप मृत शेखर खोसला के बारे में कुछ जानती हैं?
9: जी नहीं, मैं शेखर

0: जानती
1: आपको छिपा रहे हैं।
0: आप क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं मुझसे, मुझसे क्या कबूल करवाना चाहते हैं आप? कामनी जी भाई, सुंदर के साथ तुम्हारा जो संबंध है वो कबूल कर लो ना। अपने पति प्रीतम से छिप छिप कर उससे मिलती हो और कहती हो कि
2: सुंदर तुम भी कहाँ इतनी करवाहट लाते हो, हमें कभी मुश्किल से तो ऐसा इकॉनिक मिलता है।
3: ये तुम सोचती हो प्रीतम को पता नहीं चलेगा?
2: प्रीतम बहुत सीधा है, उसने मुझसे कभी कुछ भी नहीं पूछा।
0: लेकिन कोई और जानता है।
3: कोई और जानता है? कौन?
0: केशव ठाकर
3: वो बुद्धू लेखक।
0: हाँ, वो बुद्धू लेखक, वो मूर्ख बना फिरता है, शायद है भी, लेकिन उसकी नजर बड़ी तेज है।
4: जी, मेरा नाम केशव ठाकर, नहीं, मेरा मतलब है केशव लाल पुरुषोत्तम ठाकर, पेशा नाट्य लेखन।
1: तो आपने उस नाटक में देशपांडे का पाठ किया?
4: जी हाँ जी हाँ, मैंने देशपांडे का पाठ किया।
1: आप किस नाटक मंडली के लोगों से जान पहचान कैसे हुई?
4: वो बात यह है कि वो सुंदर देसाई है ना, उसके साथ एक बार अचानक मुलाकात हो गई थी। जी हाँ, वही मुझे अपनी मंडली में ले गया।
1: अच्छा, वो नाटक किसी एक फूल का नाम लो आपने लिखा था?
4: जी हाँ, मैंने लिखा था।
1: उसमें पिस्तौल की जरूरत थी?
4: जी हाँ।
1: आप कामिनी देसाई के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो इस खून के मसले पर रोशनी डाल सके?
4: वकील साहब, अजी आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा।
1: कामिनी देसाई का पाठक के सिवा कोई दूसरा प्रेमी भी था?
4: जी,
1: मैं पूछ रहा हूँ कामिनी का कोई दूसरा प्रेमी भी था?
4: जी हाँ, उसका एक दूसरा प्रेमी भी था।
3: तो अब ये भी बता दो कि कैसे तुमने कामनी के ही कारण नाटक लिखा, कैसे कामनी के निकट रहने के लिए तुमने उस नाटक में छोटा सा पार्ट करना स्वीकार किया, और कैसे नाटक के रिहर्सल में तुम हर तरह का अपमान सह लेते थे, और उस दिन रिहर्सल में कामनी को सम्मुख पाकर तुम इतने नर्वस हुए कि सिगरेट का जलता हुआ सिरा मुंह में डाल दिया और मुंह चला लिया।
4: कुछ नहीं।
5: तुम कामनी को ये दीवानों की तरह घूर रहे?
4: कुछ नहीं, वो जरा आंशस हो गया।
1: अच्छा, ठीक है,
6: ये पाठक भी आज कुछ
1: बस आप रिहर्सल शुरू करें। कामनी, तुम ठाकर के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई? उसके कंधे पर हाथ रखकर क्या कह रही हो उससे?
7: कह रही हूँ आप पाठक क्यों बेकार ईर्ष्या करते हो?
1: स्टॉप इट,
7: रिहर्सल शुरू करो ना। तुम प्रमोद का डायलॉग बोलो तो मैं कांता का डायलॉग बोलू।
1: कांता, मान लो
7: मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्रमोद, तुम अपनी सीट छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी।
1: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है।
4: जी हाँ, कामनी का दूसरा प्रेमी था, और वो मैं खुद था, यह केशवलाल पुरुषोत्तम ठाकर।
1: कामनी भी आपसे प्रेम करती थी?
4: जी नहीं, वो तो मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन मैं मनी मन उससे प्रेम करता था और अब भी करता हूँ। कामनी जी जमीन पर चले उसे मैं चूमने को तैयार हूँ, और जो वो कहे।
1: मतलब आप मन ही मन कामिनी से प्रेम करते थे?
4: जी हाँ, और उसके सामने मैं नर्वस आ जाता, यानी कि घबरा जाता था।
1: अच्छा, मरने वाले के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?
4: जी, उसका नाम शेखर खोसला था।
1: सवाल यह है कि शेखर खोसला के बारे में आपके पास कोई खास जानकारी है?
4: आज देखे लो कि सब इस दुनिया में कौन किसी को जान सका है।
1: हाँ या ना में जवाब दीजिए।
4: किस बात का जवाब?
1: शेखर खोसला को आप उसकी मौत से पहले जानते थे?
4: अजी, इंसान को देखे ना दो तरह से जान...

0: माना जाता है, एक उसे प्यार करके और दूसरे उससे नफरत करके। भाई हमारी जानकारी हमारी समझ से बनती है। अजी मैं तो न तो शेखर खोसला से प्यार करता था न नफरत।
1: बेकार की बात मत कीजिए। अगर सीधा जवाब न दिया तो अदालत के अपमान के जुर्म में सजा होगी और झूठा जवाब दिया तो जेल।
0: अब देखिए वकील साहब, आप तो खामखा डरवा रहे हैं। अजी क्या सच क्या झूठ इसका फैसला कर सकूं? जी इतना विद्वान तो मैं नहीं।
1: आप शेखर खोसला को जानते थे?
0: जी,
1: हाँ या ना?
0: जी जी कुछ नहीं याद नहीं।
1: याद कीजिए, आपने उसे 1000 रुपए दिए थे, ये सच है?
0: जी क्या बात करते हैं वकील साहब। जी बहुत लोगों ने मुझे कई बार 1000 रुपए दे दिए होंगे। अब देखिए ना, अब उस सब का हिसाब तो मुझे याद नहीं।
1: ठीक, दूसरा सवाल, नाटक में जिस पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ और जिससे खून हुआ उसमें असली गोली किसने भरी थी, आप बता सकते हैं?
0: जी नहीं।
1: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
0: कुछ नहीं।
1: ठीक से याद कीजिए।
0: जी वो जी मेरी याददाश्त अच्छी नहीं।
1: ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला से आपने 1000 रुपए लिए और ये नाटक लिखा जिसमें शेखर खोसला का खून हुआ। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था? मिस्टर केशव ठाकर चुप क्यों है, बताइए शेखर खोसला कौन था?
2: छिपा क्यों रहे हो? बता दो ना। अच्छा तो तुम कामनी और पाठक की वो बात बता दो जो उस दिन तुमने ओट में छिपकर सुनी थी। किस दिन? मैं तो प्राय रोज ही छिपकर कामनी को देखा करता था। अरे उस दिन रिहर्सल के बाद जब तुम कामनी से मिले थे और फिर ओट में छिप गए थे।
3: कामनी, रिहर्सल के बाद केशव ठाकर तुमसे क्या कह रहा था?
4: कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं, बेचारा सिर्फ बौरम है, मेरी तारीफ कर रहा था।
3: सच बताओ कामनी।
4: पाठक कितने शक्की हो तुम। तुम सोचते हो मैं उस फंतूश को प्यार करती हूँ?
3: नहीं, लेकिन लेकिन ये जरूर सोचता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो।
4: मान लो छिपा रही हूँ, फिर
3: तो फिर हमारे संबंध का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, सीधी सारी बात।
4: धमकी देते हो?
3: सफाई चाहता हूं।
4: कैसी सफाई? ओह, इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आता? शक्की अंधे फूंधे पति की तरह पूछे जा रहे हो। फिर भी मैं तुम्हारी कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी झूठी कसम खा ही नहीं सकती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
3: यानी कि तुम कुछ छिपा रही?
4: हाँ, मैं कुछ छिपा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकती। विश्वास कर सको तो करो कि जो कुछ मैं छिपा रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है, धोखा देने के इरादे से नहीं।
3: यह चरित्र की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं कि तुम जो छिपा रही हो वो चाहे जितना भी डरावना क्यों ना हो मैं उसे छेड़ लूंगा? ऐसा क्यों समझते हो कि मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं रहूंगा?
1: मिस्टर केशव ठाकर
0: जी,
1: क्या सोच रहे हैं बताइए। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था?
0: जी जी वो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा वकील साहब। मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
5: सरकारी वकील अपनी जगह बंद करें, अब अदालत खुद पांचों गवाहों से सवाल करेगी। केशव ठाकर
0: जी,
5: शेखर खोसला कौन था?
0: जी जी कहा ना हुजूर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
5: स्वाति सोनी, शेखर खोसला कौन था?
4: जी जी कैसे समझाऊं आपको, मैं कैसे समझाऊं एक स्त्री के दिल की बात, मैं कैसे कहूं शेखर खोसला कौन था? मैं शेखर खोसला को जानती हूँ या कि शेखर खोसला को नहीं जानती।
5: प्रीतम सोनी, शेखर खोसला कौन था?
6: जी नहीं, मैं शेखर खोसला को नहीं जानता, इसके बारे में मुझे मुझे कुछ पता नहीं।

0: सुंदर देश है, आपकी बहन कामनी जिसका खून किया उसके बारे में आप कुछ जानते हैं?
1: जी जी वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बात ये थी सर कि थिएटर हॉल में औरों की तरह वो भी निमंत्रित था और निमंत्रण पत्र उसी संस्था ने भेजे थे जिसने हमें नाटक खेलने के लिए बुलाया था। मैं इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
0: जगन्नाथ पाठक शेखर खोसला के बारे में क्या आप जानते हैं?
1: जी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
2: किसी एक फूल का नाम लो, इस नाटक का पहला भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधु राय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी, प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की थी। इस नाटक का दूसरा भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।
2: प्रेम रतन धर पायो, प्रेम रतन धर पायो, लत मिलन की लायो, प्रेम रतन।
1: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का पहला भाग।
3: चलते रे इश्क़ में पड़ जाते हैं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, आज स्वागत कर रहे हैं हम सभी उनका जिनके इशारों पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे थिरके हैं। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, महेश बाबू, आयुष्मान खुराना, अनुपम खेर और लगभग 30 से अधिक दिग्गज अभिनेताओं को अपनी कोरियोग्राफी से नया अंदाज देने वाली, वहीं माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, जूही चावला, अमीषा पटेल, अंतरा माली और अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के यादगार गीतों को अपनी कल्पना और सृजनशीलता से जीवंत बनाने वाली बड़ी प्यारी सी कोरियोग्राफर। आज की बातचीत केवल फिल्मों तक नहीं, आज हम जानेंगे एक कलाकार के संघर्ष की कहानी, सफलता के पीछे छिपी मेहनत, शूटिंग के अनसुने किस्से और सितारों के साथ काम करने का अनुभव और उस सफर को जिसने इन्हें भारतीय फिल्म जगत के अग्रणी कोरियोग्राफरों में स्थापित किया है। चलिए बिना किसी देर के विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में पूरे आत्मीय स्वागत और हार्दिक अभिनंदन के साथ हिंदी फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध, सम्मानित और बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में।
5: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
4: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
5: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
4: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो ये जो कोरियोग्राफी है या डांस का चस्का जिसे कहते हैं, ये लगा कब, ऐसा कब मन हुआ कि अब मुझे कर लेना चाहिए?
5: सो बेसिकली चस्का तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि जिस उम्र में मैंने काम शुरू किया
4: जी,
5: उसमें हमें चस्के नहीं पता चलते हैं। अच्छा। बहुत छोटी थी मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रही थी।
4: ओके।
5: तो हुआ यूं कि घर की जरूरतें होती है ना, तो उस उम्र से ही मुझे एहसास बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे एहसास, मोहब्बत, प्यार, तरबियत, इसकी बहुत वैल्यू है। तो वो वैल्यू में एहसास हुआ कि घर में जरूरत है। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होती थी एक,

0: मधुमति एकेडमी, मधुमति जी वो है जो हेलन जैसी लगती थी, सोलो डांस करती
1: जी,
0: थी
1: जी, जी, बिल्कुल।
0: उनके हस्बैंड और वो सिखाते थे वहां पे। एक छोटा सा काम कर रही थी मैं उस उम्र में।
1: क्या उम्र होगी वो? लगभग
0: सेवन स्टैंडर्ड में होंगी। तो मेरी बहन और मैं, हम दोनों घर में बहुत डांस करते थे। बिल्डिंग में 31st नाइट में जब प्रोग्राम्स होते थे तो हम दोनों को बुलाते थे कि आप कंपटीशन में आ जाओ। तो मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा चंचल थी और वो हमेशा से चाइल्ड आर्टिस्ट स्टेज पे काम करती थी। मैं पढ़ रही थी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी।
1: अच्छा।
0: तो जरूरत तब हुई जब लगा के फीस भरना है। छोटे भाई बहन है, हम 5 भाई बहन है। अच्छा। तो लगा के चलो कुछ काम भी किया जाए। ट्यूशन देती थी। फिर लगा के अच्छा डांस अच्छा करते, तो मधुमति मैम ने देखा और मम्मी से कहा कि आप छोड़ो अपनी बेटियों को, मैं उनको सिखाती हूँ।
1: अच्छा, वहां
0: पे मैं, हाँ, एक हाथ मिल गया। और वहां पे मैं उर्दू डिक्शन सिखाने लगी अंकल के साथ बैठ के। उनके जो शौहर थे वो पुराने एक्टर थे बहुत बड़े, तो वो उर्दू सिखाते थे सारे बच्चों को। तो मैं उनके साथ डिक्शन, क्योंकि हमारे घर में एक चलन है कि उर्दू सिखाया जाता है, तो वो मैं सिखा रही थी। उनके साथ एक्टिंग भी सिखाने लगी वो हमें। अम्मी को बुला के एक दिन बोला कि तुम्हारी बेटियां बहुत टैलेंटेड है।
1: अच्छा।
0: तो मैं इनको एक्टिंग भी सिखा रही हूँ। अम्मी ने कहा कि ठीक है मैम, अपने साथ रख के आप देखिए कैसे। तो स्कूल के बाद हम 2-3 घंटे वहां जाते थे और पता नहीं था कि वो चीज कब जाके जिंदगी में काम आ जाएगी। अम्मी हमेशा सिखाती थी कि बेटा जिंदगी का एक फ्लो होता है, जो ऊपर वाले की मर्जी है वो फ्लो चलता है, फ्लो के साथ चलो
1: जी।
0: और एक हमारी तरबियत को नहीं भूलना है।
1: क्या बात,
0: अपनी तरबियत जो मैंने तुम्हें दी है उसको हाथ में रख के आपने काम करना है।
1: मतलब नदी जैसे बाहर ही बहते जाओ लेकिन अपने जो उसूल हैं उनको छोड़ना नहीं है। जी, बहुत बढ़िया बात।
0: बहुत ज्यादा ऊपर जाके छलकना भी नहीं है कि पानी तुम्हारा सूखी घास में मिलके वहां चला जाए।
1: जी,
0: समेटते हुए आगे बढ़ना है। उनकी तरबियत है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। वहां से फिर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से स्टेज शोज के ऑफर आने लगे। तो गणेश हेगड़े जी,
1: जी
0: जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे और मेरी बहन को लॉलीपॉप, गणेश हेगड़े, ये उस वक्त के दिग्गज स्टेज के कोरियोग्राफर्स हैं।
1: जी,
0: तो पता चला कि एक शो किया जाएगा तो हमें इतना अमाउंट मिलेगा। तो अम्मी मेरी हमेशा साथ होती थी
1: अमाउंट के लालच में।
0: अमाउंट ये था, हाँ, कि एक इतना अमाउंट आएगा तो दिमाग सोचने लगा कि अगर ये पैसा आता है तो महीना गुजर जाएगा। तो मधुमति मैम ने, हाँ, मधुमति मैम ने बोला बेटा करो, बुरा नहीं है। अम्मी को बोला कि आप साथ रहो बच्चों के।
1: जी जी।
0: तो वो एक सिलसिला शुरू हुआ वहां से। और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी।
1: तो आप उस समय बैकग्राउंड डांसर्स के फॉर्म में?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: या लीड डांसर्स थे?
0: नहीं, मैं स्टेज पे डांस कर रही थी उनके ट्रुप के साथ। तो
1: अच्छा।
0: उनके अपने अपने ट्रुप होते थे। तो पहले गणेश हेगड़े, लॉलीपॉप, इन्हीं का ट्रुप चलता था। उनके एक ट्रुप में 8 लड़कियां 12 लड़कियां ऐसे होती है। उसमें मेरे परफॉर्मेंस बेसिस पे मुझे जल्दी चांस मिल गया। पोनी वर्मा उनकी मेन असिस्टेंट होती थी जो अभी कोरियोग्राफर है। तो पोनी वर्मा ने, यू नो, शी गॉट इन्वॉल्व्ड एंड शी गॉट मी। तो स्टेज शुरू हुआ, स्टेज से वो रास्ता मिलने लगा। गणेशाचार्य जी ने देखा मुझे डांस करते हुए कि लड़की तो एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि एक्टिंग बैकग्राउंड से आती थी मैं, तो ग्रेस और क्लासिकल डांस सीखो तो आपको एक ग्रेस अलग लेवल का मिलता है।
1: वो चीज हम अभी भी देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, जब आप डांसेस डालती हैं तो हाँ, चेहरा अलग दिखता है।
0: तो क्योंकि आप क्लासिकल डांस सीख के आते हो, जैसे क्लासिकल सिंगिंग भी उतनी ही, जो क्लासिकल सिंगिंग सीख के आते हैं वो एक अलग लेवल के सिंगर बनते हैं। उसी तरह आप जब क्लासिकल डांस सीख कर आते हो तो आपके परफॉर्मेंस की लेवल अलग हो जाती है। और फिर मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हूँ तो एक्टर मेरे अंदर घुसा हुआ है बचपन से। तो वो जो एक एबिलिटी है मेरी एक्टिंग और क्लासिकल डांस की, उसने मुझे बहुत सहारा दिया। तो जब गणेश आचार्य जी, जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे देखा परफॉर्म करते हैं, उस वक्त वो एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे, तो मैं कभी बैकग्राउंड डांसर फिल्मों में नहीं बनी। मैं स्टेज से डायरेक्ट गणेश आचार्य जी के यहाँ पर आई। उन्होंने अम्मी से बात की, उन्होंने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती, मुझे एक ऐसी ही असिस्टेंट की जरूरत है, क्योंकि अब उनका काम बढ़ रहा था काफी उस वक्त। तो फिर उस तरह से माय मदर यूज टू बी देयर विथ मी ऑलवेज, शी नेवर लेफ्ट मी अलोन टू टेक डिसीजंस, क्योंकि मैं थी बहुत छोटी। तब तक मैं यहाँ पहुंची 8-9 स्टैंडर्ड में आ चुकी थी,
1: बहुत छोटे
0: स्टिल स्कूल में थी। तो वो मम्मी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, असिस्टेंट बनी उनकी, उनके साथ 3-4 साल काम किया। बड़ी यहीं पर हुई हूँ, समझते समझते, सीखते सीखते। फिर प्रभु देवा जी के साथ काम करने का मौका मिला। फिर एक, मैं सरोज जी की बहुत बड़ी फैन थी, मैं काम
1: सब है।
0: बहुत बड़ी फैन, मतलब मैं
1: मास्टर जी के फैन सब है,
0: सब है। जब मैं असिस्टेंट थी, उनके गाने देख देख कर, उनकी जो लचक, उनका ये, उनका वो कहते हैं ना कि एक आप होते हो एकलव्य। काम यहाँ किया लेकिन मैं उनकी एकलव्य बन गई।
1: क्या बात है।
0: आज भी जब कोरियोग्राफी करने खड़ी होती हूँ इंडियन डांस, और ऐसा लगता है मेरे अंदर सरोज जी समा गई, अपने आप ऐसा लगता है वो मेरे अंदर समा

0: जी
1: तो वो एक उनके साथ मेरा एक इनडायरेक्ट एक लव्य वाला एक रिलेशन शुरू हो गया। उन्हें दूर से देख देख कर निहार निहार के मैंने अपने काम को संवारा।
0: आपने अपने आप को इतना सारा संवार लिया है, तो जिसने इतना संवारा है यानी शबीना जी, तो शबीना जी को गाने तो बहुत पसंद होंगे, है ना?
1: बहुत ज्यादा।
0: तो कोई गाना जो आपका हो या आपका नहीं भी हो लेकिन आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल को सुकून देता हो, ऐसा लगे कि बस अब यही सुनना है।
1: मैं पुराने गानों की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन।
0: तो हमारे विविध भारती के श्रोता आपको बहुत प्यार करेंगे।
1: आप जैसे देखो, मैंने कल इंस्टाग्राम पे डाला, आजा पिया तो है प्यार दू, गोरी बैया तो पे वार
0: दू। जी जी जी,
1: तो जो अल्फाज जो लिखाई होती थी उस वक्त की लिरिक्स लता जी जब गाती थी, तो कौन है जो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, आप मुझे बताइए।
0: जी,
1: तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ पुराने गानों की। आज भी जब मुझे अगर गाड़ी में कोई गाने सुनने हैं तो मैं पुराने गाने सुनती हूँ।
0: जो तो मुझे सुकून देते हैं। हीरा जो आप बता दें तो हम हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
1: एक तो पहले सुनाइए, आजा पिया तो ही प्यार दो, गोरी बैया तो पे वार दो।
0: चलिए,
1: उसके बाद
0: जी,
1: हाँ, उसके बाद गाना, उसके बाद लग जा गले,
0: अच्छा
1: के फिर ये हंसी रात होना।
0: बड़ी बड़ी ऐसी फरमाइश है आपकी, पर हम आपके तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गाना जो है, आजा पिया तो है प्यार दूं, का एक फिल्म का गाना है। सुनते हैं ये गीत,
1: प्लीज सुनाइए।

0: शबीना जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। गाना आपकी पसंद का हमने सुनवा दिया, लग जा गले ड्यू रहा, थोड़ी देर बाद हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे।
1: अब मुझे ये पूछना है कि कोरियोग्राफ तो आपने किया है, छोटी सी शबीना जो है वो बड़ी हो रही हैं, 9वीं 10वीं की उम्र में आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि उस समय की बेटियों में इतनी समझदारी होती थी, मतलब कई चीजें तो हम जानते ही नहीं थे, और कई सारे लोग बोले बरन बरन के लोग मिलते थे, अलग अलग तरीके के लोग आपको मिला करते होंगे, आपकी माँ आपके साथ रहती थी तो आप मैनेज कर पा रही थी। पहला गाना कौन सा था जो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने कोरियोग्राफ किया था और आपको ऐसा लगा था हाय ये मैंने कर दिया?
2: सी, जब हम असिस्टेंट होते हैं तो हम कोरियोग्राफी नहीं करते, उस वक्त की बात है, आजकल अलग माहौल है। जब मैं असिस्टेंट थी तो मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है।
0: जी जी।
2: तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
2: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है
0: जी,
2: उस लेवल पे करना है, वहां पे असिस्टेंट कोरियोग्राफर की ड्यूटी सामने आती
0: है, जाती है जी।
2: शुरू हो जाती है। कई मास्टर होते हैं जो खुद डांस नहीं करते, जो खड़े रह के

0: आपको दर्शाते हैं और आपको करके दिखाना है। मेरे जो मास्टर थे गणेश आचार्य जी, वो खुद बहुत अच्छे डांसर,
1: वेरी गुड डांसर,
0: वेरी ग्रेसफुल। उनका ग्रेस उनके मास्टर से आता है, जो कमल मास्टर जी थे
1: जी,
0: और कमल मास्टर जी बहुत कमाल। उन्होंने एक ट्रेंड, जिसे कहते हैं कि हमें ये मालूम है भगवान दादा का डांस होता था
1: जी,
0: भोली सूरत दिल के, जो वो हाथ का स्टेप
1: वो सब
0: था,
1: कमल जी का दिया,
0: वो कमल जी उसमें माहिर थे। उनके असिस्टेंट थे गणेश आचार्य जी, उनके असिस्टेंट हूं मैं।
1: बड़ी अच्छी परिपाटी से चली आ रही है।
0: बिल्कुल। वो अपने मास्टर की कहानियां हमें सुनाते थे कि कमल मास्टर जी खड़े खड़े भी अगर पूरा गाना कर ले तो आपकी नजर नहीं हटेगी, और वही मास्टर जी करते थे गणेश मास्टर जी। वही मैंने उनसे सीखा कि ग्रेस जान जाए बट ग्रेस ना जाए।
1: क्या डायलॉग है।
0: मेरे लिए वो बहुत जरूरी है कि बिना ग्रेस के तो मैं बात भी नहीं कर सकती
1: जी।
0: तो ग्रेस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम गणेश आचार्य जी, जो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो उनकी असिस्टेंट जब आप बनती हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: कि आपका मास्टर सेट पे एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, तो आप किसी जेंट्स मास्टर की जब असिस्टेंट होती हो तो आपकी जिम्मेदारी दुगना हो जाती है, क्योंकि आप फीमेल आपको ही देख रही है। जो हीरोइन है वो आपको देखकर, वो सुन तो रही है मेरा मास्टर ये बोल रहा है, बट आपको देख रही है, तो इसलिए
1: एक्सप्रेशन उसको आपसे मिलेंगे।
0: बिल्कुल।
1: फीमेल
0: अदायगी मुझसे मिलेगी। डुएट सॉन्ग है, जैसे मैं बहुत फेमस गाना अगर गणेश मास्टर जी का बताऊं, व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज, मैं असिस्टेंट थी
1: जी
0: मास्टर जी के साथ, मैं कर रही हूँ, गोविंदा और करिश्मा को दिखा रहे, तो करिश्मा मुझे देख रही है।
1: हाँ।
0: तो मेरे अंदर मुझे वो कला लानी है जो मेरे मास्टर के अंदर बचपन से है। बस वही दिमाग हमारा होता था उस वक्त, घोड़े का चश्मा लगा के अपने मास्टर को कॉपी करना और करके दिखाना
1: जी।
0: तो वहां पे हमारे, आप जितने फेमस गाने उठा लो 90s के, जुड़वा के गाने, सारे सलमान खान के गाने, सारे गोविंदा के गाने, सारे सनी देओल के गाने, संजय दत्त के गाने, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, ये जितनी, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, ये सारे गाने, उनकी सारी फिल्में उठाओ, गणेश मास्टर जी ने की है।
1: और गणेश मास्टर जी के साथ खड़ी थी शबीना खान।
0: शबीना खान। तो अब जब मैं कोरियोग्राफी करने निकली तो लोग बोलते, अरे रानी आपकी तरह डांस कर रही थी, कभी कभी तो करिश्मा आपकी तरह कर रही थी। तो ये जो
1: मैं ही सिखा रही थी,
0: मैं ही, हाँ उसी वक्त, क्योंकि वो लोग भी बहुत, उस वक्त के स्टार्स भी वैसे ही थे, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको सुनते थे, आपको करते, तो वो वाला एक एरा से हम आते हैं।
1: तो फिर उन गानों में से कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो, हालांकि काश कि हम रेडियो पे वो डांस दिखा सकते हैं। अभी हम रेडियो पे वो डांस तो नहीं दिखा सकते आपका, पर हम चाहते हैं कि वो कोई एक गीत जो उस समय का, उस इरा का जो आपने किया हो और आपको बहुत मजा आया हो कि यार असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बाद भी बड़ा मजेदार कर दिया।
0: मैं मजेदार बताऊं थोड़े से, लोग जो आज भी उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, पीपल से दैट हमें शबीना दिखती है उसमें
1: जी,
0: वो है रानी मुखर्जी का एक गाना था, कुड़ी कवारी दे रे पीछे पीछे,
1: क्या बढ़िया गाना है।
0: उसमें मैं असिस्टेंट थी, और जितने लोग मुझे अब देखते हैं, जिन्होंने देखा है, बोलते यार रानी लगता है शबीना तुम कर रही हो, बिकॉज वो सांझेदारी होती थी।
1: नहीं, आपका चेहरा भी काफी मिलता है और आवाज भी बहुत मिलती है रानी जी से, तो
0: उस वक्त काफी लोग रानी और मुझे कहते भी थे, और वी वर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ आप एक दूसरे को पसंद करके एक अच्छा गाना डिलीवर करते हो
1: जी।
0: तो वो गाना अगर आप देखोगे, आप प्ले कर पाओ,
1: बिल्कुल ये गाना हम जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत सा गीत है और शायद जसपिंदर नरूला जी ने गाया हुआ ये गाना है, और बड़ा खूबसूरत, वो बुलंद आवाज के साथ, उस बुलंदी के साथ जो किया गया है तो बेहतरीन है। तो ये गीत जरूर हम हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसमें रानी मुखर्जी दिख रही हैं, लेकिन रानी मुखर्जी को दिखाने के लिए शबीना खान पूरा डांस दिखा रही हैं, और जो रानी मुखर्जी हैं उस डांस को कर रही हैं। तो आपकी ये बेहतरीन असिस्टेंट कोरियोग्राफी डायरेक्शन, खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से।
0: ठीक है।

0: तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे, कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

0: ये गीत तो बड़ा प्यारा है। हम तो स्टूडियो में बैठे हैं कुर्सी पे, तो हम नाच नहीं सकते, लेकिन जरूर से इस गीत पे मुझे विश्वास है कि हमारे सारे श्रोता जो हैं वो डांस कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। रानी मुखर्जी की बात आई तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा रानी मुखर्जी से मिलता है, और आपसे बात होते होते आपने मुझे ये बात कही भी थी कि एक गाने में बहुत सारी जगह रानी को पैर में चोट लगी थी, वो किस्सा अगर आप खुद बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा।
1: सो ऐसे इंसिडेंट तो 2-3 बार हुए हैं
0: जी।
1: जैसे एक गाना मैं बताऊं अगर आपको, जिसमें टाइटल सॉन्ग है, जिसमें ऐसे दिखाना है कि मैं डांस कर रही हूँ,
0: हाँ,
1: और अरबाज खान को,
0: हाँ,
1: रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दिखाई देती है।
0: अच्छा,
1: तो सलमान भाई ने कहा कि हु बेटर देन शबीना। सो बहुत कम लोगों को मालूम है, अभी आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे वो वापस जाके YouTube पे देखेंगे तब समझ आएगा, लेकिन लोगों को देखकर भी समझ नहीं आया था। आज भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि दो लड़कियां थी,
0: ऐसा मुझे भी समझ नहीं आया था।
1: हाँ, आप देखिए गाना शुरू मुझसे होता है, सेम कपड़े, सेम हेयर स्टाइल, एवरीथिंग सेम, मैं डांस करना शुरू करती हूँ, हेलो ब्रदर, दैट सॉन्ग ब्रदर, हेलो ब्रदर,
0: उसमें दोनों जगह पे आप हैं बट
1: मैं हूँ, और फिर वो चेंज होता है अरबाज खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रानी आती है। तो वो जब हम कहते हैं तब पता चलता है कि अच्छा वो लड़की दूसरी थी क्या, बहुत लोगों को लगता था। इवन ऑन द सेट रानी मुखर्जी का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो घूम के मेरे पास आके मेरा मेकअप कर रहे हैं, तो दादा मैं हूँ शबीना रानी। तो हमारी हाइट, पर्सनैलिटी, बाल, काफी कुछ मिलता था उस वक्त
0: जी।
1: और फिर एक गाना था काली नागिन की जैसी जुल्फे तेरी काली काली, मैं असिस्टेंट थी और उसमें काफी वाइड शॉर्ट्स और मिड वाइड में हमें गाना जल्दी खत्म करना था, शायद पता नहीं रानी को भी ये बात पता है कि नहीं, तो वो आने से पहले काफी शॉर्ट्स मेरे साथ और आमिर जी के साथ हो जाते थे।
0: अच्छा,
1: तो वो एक गाना था। उसके बाद में चांदी की डाल पर सोने का
0: मटकी फोड़ने वाला गाना,
1: मटकी फोड़ने वाला गाना, वहां पे भी मैं असिस्टेंट थी और काफी वक्त ऐसे वाइट शॉट, तो काफी ऐसी फिल्में थी जहाँ पे लगे अच्छा जल्दी करना है, सनलाइट को संभालना है, तो आजा शबीना तू कर ले, तो आई यूज टू डू इट।
0: मतलब मजे मजे में जिंदगी में बड़े सारे काम कर लिए, मतलब जरूरत पड़ी तो हम खुद ही मेकअप करके उतर गए और डांस करके आ गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यही अदायगी होती है।
0: जी जी जी। अभी आप असिस्टेंट कोरियोग्राफर, असिस्टेंट डायरेक्टर आप काम करते जा रही हैं, तो इसमें आपने बहुत सारी फिल्मों में और भी काम किया होगा उस समय।
1: बहुत सारे
0: जी। उसके बाद आपने अपना खुद का जो पड़ाव है, या बोलना चाहिए मेरा कदम, वो कब लिया और कैसे लिया?
1: सो असिस्टेंट पीरियड की एक बात जो मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, ताकि जो आपके सुनने वाले हैं लड़कियां हैं वो समझे इस बात को, कि मेरी अम्मी ने एक शर्त रखी थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी तुमने।
0: पढ़ाई नहीं छोड़नी है जी, बहुत।
1: तो मेरे असिस्टेंट पीरियड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10th कंप्लीट की, कॉलेज जाना शुरू किया,
0: ओके,
1: काम भी कर रही हूँ, कॉलेज भी जा रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ अपने बहन भाइयों की पढ़ाई।
0: कॉलेज में क्या विषय पढ़ रहे थे उस समय?
1: मैंने 2 साल साइंस लिया था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी।
0: आप कोरियोग्राफी के साथ?
1: हाँ, तो क्योंकि मैं कोरियोग्राफर कभी बनना नहीं चाह रही थी, मैंने काम शुरू ही एक सोच के किया था, अम्मी और मेरी ये सोच थी कि हमने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना है और मैंने डॉक्टर बनना है
0: जी।
1: क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, 100% मार्क्स स्कोर करती थी स्कूल में। मैंने 1 साल पहला साइंस लिया, बहुत डिफिकल्टी से पढ़ाई भी की, काम भी किया, सेकेंड ईयर फिर मुझे इसको स्किप करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त तक भाई बहन बड़े हो रहे थे,
0: पैसों की भी
1: जरूरत थी, और पढ़ाई अगर करके मार्क्स कम आए तो मुझे वो गवारा नहीं था, क्योंकि जिंदगी भर मैंने 100% स्कोर किया था,
0: हारे तो कभी नहीं थे,
1: कभी हारे नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने वहां से छोड़कर कॉमर्स में आ गई मैं।
0: अच्छा।
1: कि कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते फिर देखते क्या होता है। तो पढ़ाई साथ साथ चलती रही मेरी।
0: मतलब आपने जो भी पढ़ा, अच्छा कठिन ही पढ़ा,
1: हाँ,
0: 11th 12th भी अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या फिर आप बायो की लाइन में पढ़ रहे हैं तो इतने सारे बायोटेक्निकल नेम्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे।
1: ऐसा होता था कि असिस्टेंट डेज

0: मेरी किताबें मेरे साथ होती थी, अम्मी साथ होते थे, किताबें साथ होती थी, पढ़ाई भी कर रही होती थी।
1: और ये बहुत बड़ी बात है और शायद ये प्रेरणा वाली बात है हमारे उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एक साथ पढ़ाई के साथ कुछ और नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल, यही मैं चाहती थी कि आप जरिए बता।
1: तो हमारे कितने सारे श्रोताओं में जो कितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे उनको कितनी अच्छी बात पता पड़ रही है कि आप काम भी कर रही हैं, कमाई भी कर रही हैं, दोनों चीजें हो रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: प्लस पढ़ाई भी हो रही है, वो भी साइंस की, बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स।
0: बिल्कुल,
1: ये तीनों बहुत हैवी सब्जेक्ट हैं, तीनों में बहुत पढ़ना, याद करना, फिजिक्स की मैथ्स भी होती है।
0: बिल्कुल, इसलिए जब सेकेंड ईयर पे आई तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी।
1: कॉमर्स भी इजी नहीं है।
0: हाँ, बीके में मास्टर थी मैं अपनी क्लास की, मतलब मैं खुद, हाँ,
1: बुककीपिंग
0: पढ़ाई में अच्छी। हाँ, तो बुककीपिंग वॉज वेरी गुड, विच इज हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो। तो जो पढ़ाई है वो मेरी जिंदगी में आज भी मेरे बहुत सपोर्ट में है। जो मैं सिस्टमेटिकली अपने करियर को संभाल पाई हूँ वो सिर्फ एक नॉलेज था, पढ़ाई का, डिसिप्लिन का।
1: जी,
0: और आप एक स्टूडेंट होते हो तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो कि आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है।
1: जी,
0: वो आज भी मेरी लाइफ में है, इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक मैं करना चाहती हूँ आपके साथ कि आप कर सकते हो जब आपके दिल दिमाग में ये टारगेट बैठ जाता है कि आपको ये करना है।
1: यानी उस समय नींद कम होगी, पढ़ाई और मेहनत ज्यादा होगी।
0: बिल्कुल,
1: और वो सब करके आप हर फील्ड में आप जीती।
0: बिल्कुल, और इंसान को, अच्छे खासे दिमाग वाले इंसान को 4 घंटे की नींद बहुत है, बहुत है
1: जी।
0: ये जो 6 घंटा 8 घंटा है वो एक्टरों के लिए ठीक है जिन्हें अच्छे दिखना है, सुंदर दिखना है, लेकिन अगर आपको आपका करियर बनाना है तो आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। शाहरुख खान साहब बहुत अच्छा कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती और आपको भूख नहीं लगती और आप बेचैन हो तो मतलब आप बहुत बड़े बनोगे आगे जाके।
1: क्या बात है,
0: आप सुकून की नींद सो गए तो खत्म।
1: सुकून की नींद नहीं, पेट भर के भूख नहीं,
0: बिल्कुल,
1: और एक अलग बेचैनी।
0: ये बिल्कुल, मैं अपने
1: इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है, काम करने के लिए लग जाना।
0: 4 घंटे की नींद काफी होती है दिमाग को और तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए।
1: कई बार लोग इसे कह देते हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं या हमें कोई और समस्या हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे लो, आपके अंदर कुछ पनप रहा है।
0: बिल्कुल,
1: कुछ जाग रहा है।
0: बेचैनी जो है एक नए कल की शुरुआत है हमेशा।
1: जी,
0: हिमेश रेशमिया ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, हम जब प्रेम रतन धन पायो कर रहे थे, कहते हैं, मैंने कहा सर कितना खूबसूरत गाना बनाया आपने, तो ही सेड रोटी की भूख मुझे आज भी है
1: इतना होने के बाद,
0: ये भूख ही मुझसे करवाती है। तो मैं सर,
1: और उसके बाद वो लोग रोटी नहीं खाते मेंटेन करने के लिए।
0: बिल्कुल, तो अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ कि ये कब हुआ, जब कोरियोग्राफी शुरू की।
1: जी,
0: मैं कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ अलग बनना, लेकिन जिंदगी का मकसद कुछ और होता है, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहती है ना, फ्लो के साथ चलो। एक फ्लो आया जब मैं प्रभु देवा जी को असिस्ट कर रही थी, चेन्नई में थी मैं, गणेश मास्टर जी के साथ अब काम छोड़ दिया 4-5 साल के बाद, और अब लगा कि ठीक है दिशा बदलनी चाहिए, तो मैंने प्रभु देवा जी को ज्वाइन किया।
1: जी,
0: मैं चेन्नई में शूट कर रही थी और मुझे बॉम्बे में रामगोपाल वर्मा जी ढूंढ रहे थे।
1: अच्छा,
0: हाँ जी। तो असिस्टेंट डेज में जिनको भी साथ मैंने काम किया उनको एक चीज वो नहीं भूल पाए कि एक लड़की है जो ऐसा परफॉर्म करती है लगता है माधुरी दीक्षित नाच रही है। तो वो जो मेरा परफॉर्मेंस था लोग भूल नहीं पाए। हर इंसान, मतलब असिस्टेंट डेज में भी ऐसा होता था कि ऐश्वर्या राय गाना कर रही है हमारा दिल आपके पास, और वो पूछ रही है कि गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट शबीना है ना अभी भी।
1: अच्छा, प्रश्न ही होता था शबीना है ना के लिए। हाँ,
0: तो उन्होंने पूछा शबीना है ना, हाँ हाँ शबीना है, उनका वीजा नहीं लगा अमेरिका का, तो अनिल कपूर और बोनी कपूर चले जाते वीजा लगवाने मेरा।
1: मतलब आपने इतना अच्छा काम किया कि आपके लिए अनिल कपूर जाके वीजा लगवा रहे।
0: वीजा, और मुझे कॉल आता है कि भैया तुम्हारा 10 साल का वीजा लग गया है, समझ रही हो तुम, अनिल कपूर बोल रहा हूँ शबीना, मतलब वो लेवल का। शाहरुख भाई ने एक बार बोल दिया कि अगर असिस्टेंट को अवार्ड होता तो मैं शबीना को अवार्ड दिलवा देता।
1: क्या बात है।
0: जब मैं उनके साथ मैं तो हूँ पागल सॉन्ग कर रही थी, जब मैं परफॉर्म भी कर रही थी।
1: क्या खूबसूरत गाना है।
0: तब तो मैंने बिल्कुल ज्वाइन पूरी तरह से किया नहीं था, मैं पढ़ ही रही थी।
1: जी,
0: असिस्टेंट डेज की बात है।

0: मियां सालार जमात मिसराए भूला की नकवा संजी में मसरूफ और मशगूल हैं। ता वक्ते के दीगर असहाब जमात मिसराए सानी के बकिया अरकान की अदायगी फरमा रहे हैं। आए
1: ये क्या गालिब की गजल है?

0: तो वो वाले माहौल में राम गोपाल वर्मा मुझे ढूंढ रहे हैं मुंबई में, और वो कहते हैं कि एक लड़की थी जो गणेश आचार्य जी के साथ परफॉर्म करके दिखाया था उसने मुझे एक गाना,
1: जी
0: वो लड़की को ढूंढो उसको ब्रेक देते हैं, वो बिल्कुल माधुरी की तरह नाचती है, और फिल्म का नाम था जिसके लिए वो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ,
1: 2003 की ये फिल्म है।
0: बिल्कुल, और वो ढूंढ रहे हैं मुझे। फिर वहां से मुझे ढूंढा गया, चेन्नई से बुलाया गया और अपनी ऑफिस में बुलाया, अम्मी और मैं बैठे और बात कर रहे हैं उनसे, और मैं कह रही हूँ कि सर मैं कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता,
1: सीधे ब्रेक
0: मुझे
1: मिल रहा है बट
0: बिल्कुल
1: आप जाना चाहती हैं पढ़ने के लिए। जी
0: मुझे आता ही नहीं कुछ, मैंने सिर्फ यही सीखा है कि अपने मास्टर्स के लिए अच्छा काम करना है, मैंने कभी टेक्निकली सीखा ही नहीं कि कैमरे के पीछे क्या होता है, तो मुझे बनना ही नहीं था इसलिए मैंने सीखा ही नहीं, मुझे एक ही बात आती है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है। ही सेड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ही सेड मैंने सरोज जी को साइन कर लिया है, मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम करो अंतरा के साथ ये फिल्म, अंतरा माली हीरोइन थी
1: जी
0: उसकी, चंदन अरोरा जी उनके डायरेक्टर थे जो बहुत बड़े एडिटर थे उस वक्त भी, तो
1: जी
0: सर मुझे कुछ नहीं आता, इसे चंदन है तुम्हारे साथ तुम्हें बता देगा, एक गाना करो मजा आया तो आगे करना,
1: वो
0: फिर
1: गाना कौन सा था पहला वाला?
0: तुमसे मिली नजर तो असर हुआ
1: हाँ
0: है आज
1: वो भी
0: ये
1: बहुत
0: दिल,
1: अच्छा किया था अंतरा वाली जी ने,
0: आहा, आहा,
1: बढ़िया किया था
0: बहुत
1: वो।
0: फेमस हुआ था वो गाना। ही सेड मैंने ऑडिशन किया है काफी लड़कियों को, बट तुम जाओ अंतरा से मिलो और देखो क्या होता है, मैं गई, अंतरा ने मुझे दो गाने दिए, इस पे कल आप परफॉर्म करके दिखा देना, मैंने किया, वो गाना था एक दो तीन और हमको आज कल है इंतजार,
1: वो
0: माधुरी
1: मुझे
0: दीक्षित
1: अभी
0: का।
1: अंतरा जी दिखाई दे रही हैं, अंतरा माली की, वो उस गेटअप में खड़ी हैं स्टेज पे और वो उसको परफॉर्म कर रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: तब वो गाना मैंने उनको परफॉर्म करके दिखाया, एंड शी जस्ट स्टूड अप एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड तुम ही करोगी मेरे गाने,
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि मैम मुझे आता नहीं है बिहाइंड द, तो चंदन अरोड़ा साथ में कर लेंगे, मेरी भी पहली पिक्चर है, सच अ ग्रेसफुल
1: जी
0: डायरेक्टर, सच अ गुड एडिटर इज,
1: जी
0: उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई। उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम शॉट मुझे ऐसे बताना, गर्दन का मूवमेंट है तो यहाँ पे हाथ रखना गर्दन के नीचे, कमर का मूवमेंट है तो कमर की तरफ हाथ रख के बताना, पूरा फुल फिगर है तो बताना कि मुझे पूरा देखना है, इतनी सादी अल्फाज में उन्होंने मुझे एक कोरियोग्राफी सिखा दी, और फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, और जब पहला गाना
1: कोई
0: एडिट करके,
1: टेक्निकल
0: ये
1: वर्ड्स नहीं थे
0: सर
1: इसमें।
0: तुम्हें यही सीखना, और फिर जो सीखोगे अपने काम से सीखो, काम करते करते सीखो,
1: जी जी
0: तो राम गोपाल वर्मा इज माई फर्स्ट टीचर एंड चंदन अरोरा इज माई

0: सेकंड टीचर, आई टेक इट लाइक दैट। एंड अंतरा माली इज माय फर्स्ट स्टार हु, उस दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल साथ में करते हैं
1: जी।
0: तो वो फिल्म मैंने की और मुझे बहुत मजा आया और फिर लगा कि ओ माय गॉड ये मेरा क्रिएशन है। जब 70mm के पर्दे पे मैंने पहली बार अपनी रचना देखी तो मुझे लगा कि स्टेप्स भी मेरे हैं
1: जी,
0: लाइट्स भी मैंने बताई है, एंगल भी मेरे, ये मैंने क्रिएट किया है,
1: ये मेरा बच्चा है।
0: हाँ, तब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे ये करना है। मम्मी बोले करो बेटा।
1: एक्चुअली में जब आप कुछ सजाते हो तो सजाने के पहले भी आप एक अकेले कमरे में बैठ के शायद उस डांस
0: को जीते हो,
1: जी रहे होगे, उसके साथ कुछ सपने भी बुन रहे होगे।
0: बिल्कुल।
1: और उसको आपने एक जीवन दे दिया।
0: मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हम रिहर्सल हॉल के अंदर बैठ के गाना एडिट तक देख लेते हैं।
1: हाँ,
0: एडिटिंग तक।
1: हाँ,
0: पहला प्रोसेस होता है, गाना आता है, कोरियोग्राफी होती है, डायरेक्टर को दिखाते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं
1: जी।
0: तो पहले प्रोसेस में बैठ के हम एडिटिंग रूम के अंदर गाना देख लेते हैं
1: जी।
0: ये इतनी खूबसूरत रचना है जिसको आप रचने जा रहे होते हो, तब मुझे वहां पे मजा आया और मैंने कहा कि अब यही करना है मुझे। फिर जिंदगी का मोड मुझे कोरियोग्राफी की तरफ ले आया और वहां से मेरी कहानी शुरू हुई।
1: आपको सुन के ना इतना मजा आ रहा है कि जिंदगी में आप एक 20 मिनट आधा घंटा किसी को सुन रहे हो और सुनते सुनते आप उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में काम आ जाएंगी, ऐसी मिलते जा रही हैं। तो आपसे बात करके शबीना जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हमारे श्रोताओं को हमें कोई गीत तो सुनाना पड़ेगा। और आपके गीतों में से कोई गीत सुनाना है या पुराना सुनाना है, हम आप पे बिल्कुल छोड़ देते हैं। आज आपकी पसंद हमारे श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए, जितनी भी
0: चाहिए। मेरा एक गाना है मेरी अपनी फिल्म का जो मेरा अपना फेवरेट है
1: जी,
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म से है, गाना है जलते दिए।
1: बहुत खूबसूरत गीत है,
0: उसमें मुझे वो आत्मा दिखती है जो पुराने गानों में दिखती थी
1: जी। जी,
0: जो आप सुनेंगे या आप देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि ये गाना रूह को टच करके जाता है।
1: इसके साथ एक प्रश्न आ रहा है मन में, वो जो बीच बीच में जो दिए जल रहे हैं और वो बीच में से जो आपकी अभिनेत्री नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते यहाँ से वहां जा रही हैं, तो इस चीज के लिए भी विशेष सुरक्षा कुछ की जाती होगी कि कैसे वो कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो हम गाना सुना।
0: अगर आप गाना देखेंगे आपके जरिए जो इतने लोग
1: सुनेंगे और बाद में देखेंगे भी,
0: देखेंगे और सुनेंगे तो ये जो दिए देख रहे थे आप, क्योंकि गाना था जलते दिए, तो हमारे जो सूरज बजातिया जी है उनको तो सब जानते हैं, सबके दिलों की धड़कन है वो, तो वो बहुत ही रियल लाइफ में जीते हैं अपनी।
1: बिल्कुल।
0: उनसे मैंने, वो मेरे एक मेंटोर है, मेरे टीचर है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। जब ये गाना आया उन्होंने कहा कि हम दिए खुद जलाएंगे।
1: खुद जलाएंगे यानी
0: नकली दिए भी मिलते हैं जो वो ऑन करके डाल दो
1: एलईडी वाले?
0: नहीं, उन्होंने अपने डीओपी को बोला, मणिकंदन हमारे डीओपी थे, हे सेड मैं चाहता हूँ कि हम दिए जलाएं, जितनी
1: दिए जलाएं
0: दिख रहे हैं हम जलाएंगे, भले 50-100 लोग भागे शॉट के पहले दिए जलाए और बाहर आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है इस
1: बढ़ जाती है इसका ये काम ऐसा
0: हाँ,
1: होता
0: तो उसमें दिए जलाने में मैं भी होती थी, मेरे असिस्टेंट उनके असिस्टेंट वो भी भागते थे कि दिए जलाना है, पानी में भी दिए जल रहे हैं
1: जी,
0: आपने जो सवाल किया साइड में
1: जल रहे हैं,
0: जहां जहां वो जा रही है
1: हाँ
0: वो दिए जल रहे हैं। और उन दियों को हम जलाते थे और एक डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी
1: हाँ, और वो
0: तो
1: बहुत चलकर नेट हाँ, की साड़ी है वो जी।
0: तो वो हमारा एंगल हम ऐसे रखते थे कि दिए लगे उनके बहुत करीब बट वो होते थे बहुत दूर।
1: मेरा प्रश्न वही था कि हमें हाँ, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल दिए के बगल से निकल रही है और वो
0: हमारा एंगल ऐसे रखते हैं कैमरा के कैसा लगे कि है बहुत करीब, लेकिन वो है बहुत, हम जो भी फिल्म के सेट पे करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, हमारे जो लोग एक्सपर्टीज रखते हैं इस मामले वो हमारे सेट पे होते हैं
1: जी।
0: और फायर के लिए बराबर से इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होता,
1: डॉक्टर्स
0: होते हैं, सारी चीजों को बहुत ध्यान में रख के फिल्म के सेट पे काम किया जाता है। जैसे लोग आजकल रील बना रहे हैं उनको हाँ, भी ये समझना चाहिए कि आप देख के रील बनाते हो लेकिन आप भी इसका ध्यान रखो कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। घर में रील बनाते हो, पीछे पर्दे लगे हैं
1: हाँ,
0: वो पर्दे जल जाए, घर में रहने वालों को नुकसान हो जाए,
1: सेफ्टी और सेफ्टी बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी
1: चाहिए।
0: तो इस गाने को बहुत ही प्यार से, कोमलता से दर्शाया गया,
1: बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट, बहुत गीत है और बहुत प्यारा गीत है ये, दिल में ऐसे लगता है सुनते सुनते कि हाँ कुछ हो रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो जब कुछ हो रहा है तो वो गाना सुन लेना चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए इस प्यारी सी सूचना के साथ, जानकारी के साथ कि कैसे शूट किया गया ये गाना जलते दिए, आप सबके लिए।

0: अभी आपने फीमेल एक्टर्स का नाम लिया, ऐश्वर्या का नाम लिया आपने, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया
1: जी।
0: बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी इंटरनेट पे सर्च किया, ढूंढा आपको, और वो ढूंढते ढूंढते तो कभी कभी ऐसी चीजें जो होती हैं सोशल मीडिया वाली वो भी बड़ी काम आ जाती हैं, तो वहां से ये

0: जानकारी मिली कि लगभग जब हम पढ़ रहे थे तो 34-35 महिलाएं जो हैं, एक्ट्रेस जो हैं, अभिनेत्री जो हैं, उनको आपने बढ़िया डांस करवाया है, बढ़िया कोरियोग्राफ किया है। तो पूजा जी हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, विपाशा है, परिणीति हैं, माधुरी हैं, रेखा हैं, रेखा जी को भी आपने सिखाया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, या हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं, बात तो ये बड़ा वैसा प्रश्न है, कौन है जो बड़ी सरल सी है और बड़ी आसानी से सीख जाती है और बड़े प्यार से कर लेती है?
1: आपने अभी और पुराने सबका नाम एक साथ ले लिया।
0: नहीं, आप अलग से बता सकती हैं।
1: हर एक के बारे में बता दूं। रेखा जी हमारी मुड़ाओ जान
0: जी,
1: उनसे बेहतर कौन हो सकता है। उनके साथ मैंने सुपर नानी एक फिल्म की थी, इंद्र कुमार जी की
0: जी।
1: मैं नई कोरियोग्राफर थी
0: जी।
1: और जब उनको पहली बार देखा, मेरे पैर ठंडे हो गए, हाथ ठंडे हो गए, बिकॉज उनकी अदायगी
0: आज भी उतनी ही खूबसूरत,
1: आज भी उतनी ग्रेसफुल,
0: 73-74 बरस की उम्र में भी वही अदायगी,
1: आज भी वो स्टेज पे खड़ी हो जाए, बस यूं देख ले तो दिल के अंदर तीर घुस जाते, वैसी है वो। और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया और उनके साथ मैंने वो फिल्म की
0: जी,
1: उसमें डांसिंग नंबर भी था एक, और बहुत प्यार से किया। मेरी उस साल नई शादी हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से बना के एक मंगलसूत्र मुझे पहनाया।
0: क्या बात है।
1: और अपने हाथ से एक लेटर दिया लिखकर, इसे मैं कहती हूँ अचीवमेंट है। ठीक है, उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा बहुत ग्रेसफुल है।
0: अच्छा,
1: बहुत ग्रेसफुल है, उसमें वो बात है।
0: अच्छा,
1: जो हम कहते हैं ना अदायगी, नजाकत, यू नो, वो है। परिणीति इज ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल।
0: यस,
1: ग्रेसफुल मैं तब कहती हूँ ना, परिणीति के साथ अक्षय कुमार, परिणीति का एक गाना किया था कीमती, एक सॉन्ग था मेरा, बहुत ग्रेसफुल। जहां आपके पास डांस नहीं करना है, खड़े रह के कुछ बोलना है, कुछ गाना है, वहां पे आपकी नजाकत और आपका ग्रेस पता चलता है।
0: इसे अंग्रेजी में मिनिमल कहते हैं, या मतलब कमतर में बेहतरीन करके निकल जाना।
1: बिल्कुल, आपको ज्यादा शोर शराबा, जंप वंप करने की जरूरत नहीं है। आप बस, आपका क्लोजअप लगा और आपने सिर्फ कैमरा को देखा और एक लाइन गा दी, इसे कहते हैं अदायगी, जो परिणीति में है, सोनाक्षी में है। सोनम इज रियली गुड, सोनम प्रूव्ड इन प्रेम रतन धन पायो, शी वर्कड रियली हार्ड विथ मी। अगर मेरा नाम परिचय इस दुनिया को और इस इंडस्ट्री को पता चला तो प्रेम रतन धन पायो फिल्म थी, और उसमें मेरी हीरोइन थी सोनम कपूर, शी वर्कड रियली हार्ड। रात को 2-2 बजे तक रिहर्सल किया, और शी, क्योंकि मैं अपनी अदायगी को कैमरा के सामने तो दिखा सकती नहीं हूँ, बट मैं अपनी एक्ट्रेसेस के साथ, अगर वो मेरे साथ मेहनत करने तैयार है तो उनके साथ मेहनत करके अपने आप को उनके जरिए कैमरा पे दिखा सकती हूँ। जो जलते दिए में आप देखिए,
0: के साथ में
1: बिल्कुल
0: डांस किया,
1: शकुंतला बन गई थी वो। बिल्कुल, उसका
0: ऐसा ही,
1: यही
0: दुष्यंत का ही इंतजार रह गया था।
1: शी वॉज वेरी गुड, वेरी ग्रेसफुल,
0: बहुत बहुत बहुत प्यारा किरदार।
1: जितनी भी मेरे साथ, अभी मैं एक नई फिल्म कर रही हूँ शर्वरी,
0: अच्छा,
1: नई लड़की, आज की लड़की है, बहुत ग्रेसफुल है वो भी। तो होता क्या है, जब आपका प्रोफाइल बनता चला जाता है तो लोग आपको सर्च करते हैं और फिर कहते हैं, ओह आपने इतनी ग्रेसफुल गाने की है, मुझे भी करवा दीजिए।
0: सही बात है, कहेंगे लोग।
1: बस उसी की वजह से मेरा एक जो प्रोफाइल बना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरिंग क्लासिक एंड गुड वर्क, जो बहुत जरूरी होता है, वही है। तो ये जितनी भी लड़कियों का आपने नाम लिया जिनके साथ मैंने काम किया, दे वर्क्ड हार्ड विथ मी एंड दैट्स हाउ दे हैव।
0: इनकी कोई नखरे नहीं होते थे कि तुम मुझे ये मत कराओ, वो मत कराओ, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी। जैसे माधुरी दीक्षित हैं, वो अपने आप में परिपक्व हैं नृत्य के लिए। ऐश्वर्या राय हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ सीखा हुआ है नृत्य में। तो इन लोगों का कुछ ऐसा अपनी फरमाइश नहीं होती है?
1: सी, जैसे माधुरी दीक्षित की बात की आपने, मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ
0: जी।
1: उनके साथ अब असिस्टेंट डेज में मैं एक पुकार फिल्म का गाना कर रही थी,
0: एक ही जरा जरा
1: वो भी किया, और एक गाना था जो फिल्म में नहीं डाला, गणेश मास्टर जी कर रहे थे
0: जी।
1: जब वो मेरे सामने आए और मुझे उनको करके दिखाना था, और पहली बार मैंने अपनी प्रेरणा को अपने सामने देखा तो मैं रो पड़ी। शी केम, शी हग्ड मी एंड शी गॉट टू नो दैट आई एम अ बिग फैन। शी सेड, अगर मेरी अच्छी फैन है तो मुझे करके दिखा ये गाना पूरा। और मैंने उनको पूरा गाना डांस करके दिखाया। शी सेड, मिरर लाओ, मुझे शबीना को कॉपी करना है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, ये होता है अचीवमेंट। और मैं बिल्कुल शून्य थी, क्योंकि माधुरी दीक्षित ने कभी लोगों को बदल के अपने परफॉर्मेंस नहीं किया। उन्होंने जितने कोरियोग्राफर के साथ काम किया, ये है लेजेंड होने की एक बहुत बड़ी निशानी। आप कब लेजेंड बनते हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज होती है।
0: उन्होंने हर कोरियोग्राफर को, उन्होंने अगर मान के उसके जैसा,
1: उन्होंने सरोज जी को अगर निभाया स्क्रीन पे, तो उन्होंने जय बोराडे को निभाया
0: जी।
1: आपको पता है जय बोराडे ने उनके साथ बहुत बड़ी फिल्म की थी जो सूरज बजाजिया की थी, उसका नाम था हम आपके हैं कौन
0: जी।
1: उन्होंने निभाया उनको, उन्होंने उनको निभाया, गणेश आचार्य जी को निभाया, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल जो गाना है। मैं असिस्टेंट थी।

0: वो भी उन्होंने किया
1: जी,
0: माधुरी दीक्षित जी ने। तो उन्होंने मेरे साथ जब वो गाना असिस्टेंट में किया, बड़ी मुश्किल भी, शी नेवर सेड के मुझे चेंज करना है। शबीना ने बहुत अच्छा किया, शबीना मुझे बताओ कैसे किया, मुझे ऐसे करना है। जब एक दिग्गज कलाकार आपको ये कहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है
1: जी।
0: और वही चीज लेकर चल रही हूँ अपने कोरियोग्राफी के पीरियड में मैं। टचवुड, अभी तक कोई ऐसी हीरोइन नहीं आई जिन्होंने ये कहा कि ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है। क्योंकि मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ उनको। और मेरे डायरेक्टर जैसे सूरज बजातिया, जलते दिए, साड़ी पकड़ के एक मोमेंट है चलना है। सूरज जी ने कहा सोनम मुझे यही चाहिए, तो आपका डायरेक्टर आप पे भरोसा करता है
1: जी,
0: तो एक्टर फिर खामोश हो जाता है।
1: हाँ।
0: और सलमान खान,
1: हाँ।
0: जब वो गाना देखा, मैं और मेरा असिस्टेंट जो मेरा एसोसिएट कोरियोग्राफर है, मेरा छोटा भाई है, वो सगा भाई है,
1: जी।
0: वो भी मेरे साथ रह रहे के वो भी एक एक्टरों की तरह परफॉर्म करता है।
1: अरे वाह।
0: हम दोनों ने जब करके दिखाया तो सलमान खान जी ने एक बात बोली कि मुझे पता चल गया मुझे कैसा करना है, मुझे इसकी तरह करना है, सोनम तू देख ले तुझे क्या करना है। सूरज जी ने बोला कि शबीना।
1: जी
0: तो वहां पे कभी कभी जब एक्टर कुछ बोलने जाता है तो आपका हीरो स्टार मेगा स्टार या आपका डायरेक्टर आपके साथ होता है तो फिर सब कुछ बैलेंस होकर चलता है। और मेरे मामले में यही चीज मेरे साथ ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि जब ग्रेसफुली मैं करके दिखाती हूँ तो एक्टर लोग को लगता है मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, आपका 50% भी हो जाए तो बहुत होगा।
1: हाँ।
0: उसके लिए आपको करना पड़ेगा, पहले
1: और उनको वहां तक लाना पड़ता है,
0: लाना पड़ेगा
1: मेहनत
0: आपको
1: करनी पड़ती है।
0: उनके कैरेक्टर को। मैं करके दिखाती हूँ, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं एक फिल्म एक वक्त में करती हूँ ताकि उस कैरेक्टर को जी पाऊं, उसकी तरह बन पाऊं, उसके जैसे लचक लाऊं, उसके जैसे, वरना कैरेक्टर कुछ और कर रहा है, कोरियोग्राफर अगर कुछ और दिखा रहा है तो वो कैरेक्टर जी नहीं पाएगा फिल्म के अंदर बराबर से।
1: मतलब एक फिल्म जब बन रही होती है तो उसके पीछे एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक डीओपी और उसके कई सारे लोग, इनके पीछे
0: सारे
1: इनके
0: एचओडीज,
1: असिस्टेंट्स, एक कोरियोग्राफर और उसके कई सारे असिस्टेंट, उन किरदारों को खुद में जी रहे होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और तब कहीं जाके वो अकेला अभिनेता या अभिनेत्री नहीं जी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उस
0: तभी
1: किरदार को
0: प्रेम
1: जी रहे
0: रतन
1: होते
0: धन
1: हैं।
0: पायो बनी है, मैंने वो ही फिल्म की 1.5 साल और कोई फिल्म को हाथ नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, लेकिन उसके पीछे राज यही है कि पूरी फिल्म जब मैं अकेली कर रही हूँ, ये
1: जी
0: पूरी फिल्म मेरी अपनी फिल्म है,
1: जी
0: इसका कोई भी कोना, कोई भी म्यूजिक मेरे हाथ से ना निकल जाए। और उस कैरेक्टर को मैं मैथिली को जीने लगी
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: सोनम का कैरेक्टर
1: जी।
0: है, फिर मुझे प्रेम को भी जीना है, फिर मुझे सूरज बड़जात्या जी को जीना है,
1: वो दो छोटी बहनों को भी जीना है
0: उनको भी
1: बीच में
0: जीना है, हर एक कैरेक्टर को जीना है,
1: जी।
0: तो फिर उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी तो ये ऐसी फिल्में बनती है। अगर आप मेरा करियर स्पैन देखो, जितने साल मैंने काम किया है, मैंने मल्टीपल फिल्में क्वांटिटी में नहीं की है, मैंने क्वालिटी में की है।
1: तो ये बढ़िया बात आपके साथ चल रही है और इसके बीच मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूं, क्योंकि इतनी अच्छी बात आपने बताई है और शायद हमारे श्रोता भी इस बात को सुनकर समझ पा रहे होंगे। वहां तक
0: बिल्कुल
1: पहुंच, मैं तो सेट तक पहुंच चुकी थी, तो हमारे
0: बिल्कुल
1: श्रोता भी सेट तक पहुंच ही रहे होंगे। थे तो ये लग जा गले तो सुनाना बनता है।
0: उफ प्लीज।
1: तो आपका पसंदीदा गीत, और ये कहूं पूरी यूनिवर्स का पसंदीदा गीत, मदन जी ने क्या बढ़िया इसमें
0: बिल्कुल,
1: संगीत दिया है, क्या बढ़िया इस गीत को गाया गया है और क्या फिल्माया गया है।
0: मैं फिल्माने पे अगर कुछ बोल पाऊं इस
1: हाँ
0: पर,
1: बिल्कुल
0: अगर
1: जी,
0: आप इस गाने को फिर से मेरे मेरी इस
1: आपके
0: इंटरव्यू
1: नजरिए
0: के
1: से।
0: बाद अगर आप वापस से जितने आपके श्रोता है वो भी देखें तो उन्हें समझ आएगा कि इस गाने को ब्लैक एंड व्हाइट पे शूट किया गया। कोई सोच सकता है कि हर एक शॉट मूवमेंट में है, वहां पे कैसे शूट किया होगा, हर एक शेडो के साथ कैमरा का जब एंगल चलता है, कई बार हाथ में कैमरा लेके डीओपी ने शूट किया होगा, लेकिन उसकी स्मूथनेस, उसकी अदायगी देखिए, वो एडिट पे संभाला हुआ गाना नहीं है, वो वैसे शूट किया गया है। इसको पिक्चराइज इतना बढ़िया किया गया है कि मैं हर गाना आज भी शूट करने से पहले लग जा गले देखती जरूर हूं,
1: अच्छा
0: क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आप शेडो क्रिएट कर रहे हो चेहरे के ऊपर,
1: हाँ
0: जंगल में वो गाना शूट हो
1: हाँ
0: रहा है और दो लोग
1: लाइट
0: हैं,
1: इफेक्ट्स इतना खूबसूरत आ रहा
0: बिल्कुल
1: है जी,
0: दो ही लोग हैं और कुछ नहीं है,
1: कुछ नहीं है
0: और दोनों हर फ्रेम में है,
1: और बहुत ज्यादा लाइट्स भी नहीं दिखाई
0: लाइट्स
1: गई
0: भी
1: हैं
0: नहीं है,
1: बैकग्राउंड में, क्योंकि वो
0: तो
1: जंगल का है।
0: उसको वो जो सूदिंग, वो गाना अगर सुनने में प्यारा है तो देखने के बाद भी लोगों ने उसको उतना ही पसंद
1: जी
0: किया है।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ पे कोरियोग्राफर आता है बीच में, कि
1: तो ऐसे
0: कोरियोग्राफर एक
1: गानों में भी
0: म्यूज,
1: कोरियोग्राफर का काम
0: बिल्कुल
1: होता है,
0: बिल्कुल
1: सिर्फ
0: होता
1: नाचने के लिए नहीं बाकी।
0: है, बिल्कुल होता है। आपने अगर अभी मेरा एक गाना सुनाया है जलते दिए,
1: जी
0: और आप ये गाना देखिए, आई
1: जी
0: वॉज इंस्पायर्ड बाय लग जा गले
1: जी
0: फॉर शूटिंग माई सॉन्ग जलते दिए।
1: जी
0: तो बीइंग अ सेंसिबल कोरियोग्राफर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शूट सच सॉन्ग्स विथ योर डायरेक्टर।
1: जी
0: डायरेक्टर नॉर्मली मूवमेंट वाले शॉट नहीं लेते, लेकिन म्यूजिक की डिमांड होती है
1: कि मूवमेंट

0: हो,
1: मोमेंट हो, कैमरा कॉम्प्लीमेंट करे जो लज्जा गले में हुआ है
0: जी।
1: कैमरा इज कॉम्प्लीमेंटिंग एवरी इमोशन ऑफ साधना जी और मनोज कुमार जी।
0: बहुत खूबसूरत गीत है।
1: और कैरेक्टर्स देखो उसके जो जी रहा है कोरियोग्राफर उस गाने में, इसी को मैं कहती हूँ कि अपने कैरेक्टर को जीना एक कोरियोग्राफर को आना चाहिए।
0: तो इतनी अच्छी बात के बाद तो ये गाना बनता है, तो जल्दी से सुना देते हैं ये लग जा गले।

जानी मनी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

जानी मनी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले,

प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का नमस्कार। बरसात से प्रेम का अटूट नाता है। कहते हैं प्रेम कभी शब्दों का मोहताज नहीं होता। प्रेम तो एक एहसास है जो कभी किसी मुस्कान में उतर आता है तो कभी किसी खामोशी में, कभी किसी खत की स्याही में और कभी बरसती हुई बारिश की हर बूंद में।

जब होता है तो मौसम बदलने लगते हैं, धूप नरम लगने लगती है, चांद कुछ ज्यादा ही अपना सा लगने लगता है और हवा जैसे किसी का नाम कानों में घोलकर गुजरने लगती है और बरसात की हर एक बूंद हम पर ऐसे बरसती है जैसे किसी का प्रेम बरस रहा हो।

बरसात में आसमान भी खुलकर प्यार बरसाता है और धरती भी उसे अपनी खुली बाहों में तड़पकर समेट लेती है। बरसात की हर एक बूंद जैसे किसी अधूरे ख्वाब की कहानी कहती है।

अंतराल के बाद छायांकित में आपका फिर से स्वागत है। बरसात पुरानी यादें ताजा कर देती है तो कभी खिड़की या छत पर गिरती बूंदें किसी की दस्तक देने लगती है और भीगी हुई मिट्टी की खुशबू किसी पुराने मिलन की याद बन जाती है।

रात की तन्हाइयों में जब बारिश की धीमी फुहारें खिड़की से टकराती हैं, तब दिल भी किसी का नाम लेकर मुस्कुरा देता है। चांद बादलों में छिपा होता है, तब भी उसकी रोशनी दिल को रोशन कर रही होती है। ठीक वैसे ही जैसे सच्चा प्रेम दूर होकर भी दिल को वैसे ही धड़काता है जैसे महबूब सामने ही बैठा हो। दम भर

प्रेम में मिलना जितना सुंदर होता है, विरह उतना ही गहरा दर्द वाला। दूरियां प्रेम को कम नहीं करती, बल्कि और बढ़ा देती हैं। बिछड़कर भी प्रेमी एक दूसरे के लिए जब दुआ बन जाएं, तो ऐसा प्रेम अमर हो जाता है। कुछ रिश्ते साथ होकर भी अधूरे रह जाते हैं और कुछ दूर रहकर भी पूरी जिंदगी का सहारा बन जाते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया है। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक प्रमुख संगठन है। उन्होंने मुंबई फोर्ड क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नाविकों, नौवहन कंपनियों, बंदरगाहों, सेवा प्रदाताओं और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों को पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति कर रहा है। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कोर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्चस्तरीय वार्ता हुई।
2: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण

मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हूती विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: संस्कृत समाचार दिल्ली।
1: अंतरिक्ष ड्रोन्स इत्यादिषु उदयोन्मुख क्षेत्रेषु स्वावलम्बनं विकसित भारतस्य सुदृढाधारस्य रूपेण कार्यं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा आईआईटी छात्राः स्वनिर्णयस्य केन्द्रस्थाने राष्ट्रियहितं स्थापयितुं प्रार्थितः। झारखंड सर्वकारः जेपीएससी तथा जेएसएससी परीक्षासु अभिकथितानां अनियमिततानां विषये छात्रैः सह द्वितीय चरणस्य वार्तालापम् अकरोत्। हिमाचल प्रदेशस्य चंबा मंडले अद्य प्रातः बस दुर्घटनायां सप्त जनाः मृताः, एकादश जनाः व्रणिताः च अभवन्। आईएमडी इत्यनेन अद्य राजस्थानस्य ओडिशा राज्यस्य च उपरि अत्यधिक वृष्टेः नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। प्रतिकूल ऋतोः कारणात् जम्मूतः बाल्टाल नगरं प्रति अमरनाथ यात्रा भी स्थगिता। अपि च पुरुषाणां जैवलिन थ्रो क्रीडायां आशीष यादवः संयुक्त राज्य अमेरिका देशे विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप क्रीडायां रजत पदकं प्राप्तवान। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य आईआईटी दिल्ली इति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य विद्यार्थिनः समाकारिताः, यत्ते स्वनिर्णयेषु राष्ट्रहितं सर्वोपरि स्थापयन्तु। आईआईटी दिल्ली इत्यस्य 75वें दीक्षांत समारोहं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् प्रत्येकं संततिः तात्कालिकं विशिष्टं समाह्वानं सम्मुखीकरोति, स्वस्य राष्ट्रीय दायित्वं च निर्वहति। श्रीमोदी अवोचत् यत् मित्राणि अद्यतनकाले अस्माकं आह्वानानि भिन्नानि सन्ति, अतः अस्माकं दायित्वमपि भिन्नमस्ति। जीवनस्य आगामिषु 30-35 वा वर्षेषु भवन्तः यत्किमपि करिष्यन्ति तत्सर्वम् अस्माकं विकसित भारतस्य यात्रायां प्रभावं जनयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशे नूतनानां क्षेत्राणां विकासेन युवभ्यः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, ड्रोन इत्यादीनां क्षेत्राणां उदाहरणानि उद्धृत्य सः अवदत् यत् भारतं सर्वेषु क्षेत्रेषु आत्मनिर्भरता प्राप्तये कार्यं कुर्वन्नस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् आत्मनिर्भरतायाः अयम् उपक्रमः विकसित भारतस्य निर्माणार्थं दृढाधारस्य कार्यं करिष्यति।
2: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: अर्धचालक क्षेत्रम अपि उदाहरणम् अस्ति। यदा वयम् अस्मिन् दिशि पदानि स्वीकृतं तदा केचन जनाः तस्मिन् विषये प्रश्नं कृतवन्तः यत् भारतं तत् कर्तुं न शक्नुयादिति। परन्तु अद्य प्रथमे अर्धचालक एककेषु उत्पादनम् आरब्धमस्ति। अहं च दृढतया विश्वसिमि यत् चिप्सतः जहाजपर्यन्तं सर्वमपि अत्रैव विनिर्मितं भविष्यति।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा। लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक

0: आशीषः तृतीय प्रयासे चतुस्सप्तति अधिक शून्य नव मीटरमितं व्यक्तिगतं सर्वोत्तम क्षेपं प्राप्य द्वितीय स्थानं संप्राप्तवान्। आशीषः अस्मिन् स्पर्धायां रजत पदकं प्राप्तवान्। सः नीरज चोपड़ा इत्यस्य पश्चात् द्वितीयः भारतीयः अभवत् इति वार्ताः।
1: प्रसार भारतीच्या वेब्स ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआरए ऍप सहित 558 किलोहर्ट्स वर आकाशवाणी मुंबईची अस्मिता वाहिनी आपण ऐकत आहात। आता कार्यक्रम विविध।
2: नमस्कार, आज के विविध कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के विविध में सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हमारा विशेष कार्यक्रम युवा भारत, नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण। भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यह युवा शक्ति केवल संख्या नहीं बल्कि संभावनाओं, ऊर्जा, नवाचार और परिवर्तन की शक्ति है। जब युवाओं के सपने राष्ट्र के सपनों से जुड़ते हैं तब विकास की नई इबारत लिखी जाती है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्रीमती रीना त्यागी। आप एक लेखिका, शोधकर्ता और अनुवादक हैं। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं। मुंबई के बाल सुधार गृहों सहित अनेक सामाजिक सामायिक विषयों पर आपने शोध किया है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख प्रकाशित हैं और साथ ही आकाशवाणी पर भी आपकी वार्ताएं प्रसारित हुई हैं। आप मीडिया कोर्स में अतिथि प्रोफेसर और एफएम रेडियो के लिए कंटेंट राइटर भी रह चुकी हैं। बरसों तक कमर्शियल अनुवाद के बाद अब साहित्यिक अनुवाद में आप सक्रिय हैं। तो लीजिए सुनते हैं युवा शक्ति, नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर रीना त्यागी जी के विचार।
3: सभी श्रोताओं को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये विशेष दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा युवाओं के मुद्दों और उनकी भूमिकाओं को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर के युवाओं की समस्याओं और चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनकी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देना, समाज और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिकाओं को मजबूत करना और युवाओं को सशक्त बनाकर उन्हें निर्णय लेने में शामिल करना है। ये दिन युवाओं को अपनी प्रतिभा और क्षमता पहचानने का अवसर देता है, साथ ही सरकारों और संस्थाओं को ये याद दिलाता है कि युवाओं के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। इसके साथ ही ये भी बता दूं कि 12 अगस्त विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहीं 12 जनवरी भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। भारत सरकार ने वर्ष 1984 में घोषणा की कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके बाद 1985 से हर साल यह दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये दोनों ही दिन युवाओं को प्रेरित करने और उनके महत्व को समझाने के लिए समर्पित हैं। अब लौटते हैं आज के विषय युवा भारत, नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण पर। युवा केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि परिवर्तन का प्रतीक है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब युवाओं ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है तब तब समाज में क्रांति आई है, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम का दौर रहा हो या आधुनिक भारत के निर्माण का समय। हर युग में युवाओं ने ही आगे बढ़कर नेतृत्व किया है। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि उसके जागरूक, शिक्षित और कर्मशील युवा होते हैं। आज भारत विश्व के सबसे युवा देशों में शामिल है। यह हमारे लिए एक बड़ी ताकत है, लेकिन यह ताकत तभी सार्थक होगी जब युवा केवल अपने भविष्य के बारे में नहीं बल्कि देश के भविष्य के बारे में भी सोचेंगे। आज का युवा मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करने वाला ही नहीं है, वह नई तकनीक विकसित करता है, एक विचारों को जन्म देता है, समाज की समस्याओं का समाधान भी खोजता है। सच कहा जाए तो यही नवाचार यानी इनोवेशन है। नवाचार केवल बड़ी प्रयोगशालाओं में नहीं होता। एक किसान का नया तरीका, एक छात्र का अनोखा विचार, एक स्टार्टअप की नई तकनीक, किसी गांव की छोटी सी समस्या का नया समाधान, ये सभी नवाचार के ही उदाहरण हैं।

अगर हम अपने आसपास की समस्याओं को अवसर में बदलना सीख जाएं, तो वही विचार समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार बन सकता है। सच ही कहा गया है, जो सोच बदलने का साहस रखते हैं, वही इतिहास बदलने की ताकत रखते हैं। सोच बदलने का साहस रखने वाले ही कुशल नेता बनते हैं। लेकिन नेतृत्व का अर्थ केवल किसी पद पर बैठना नहीं है। बिना किसी पद पर आसीन हुए भी नेतृत्व किया जा सकता है। इस मायने में नेता वह है जो सबसे पहले जिम्मेदारी स्वीकार करता है और सबसे बाद में सफलता का श्रेय लेता है। सच्चे नेतृत्व की यही तो सबसे बड़ी खूबी होती है, वे हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने में विश्वास करता है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन सभी ने हमें बताया कि नेतृत्व का आधार सेवा, ईमानदारी और दूरदृष्टि है। आज हर युवा अपने घर, अपने विद्यालय, अपने कार्यस्थल और अपने समाज में नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए उसे बस कुछ संकल्प करने होंगे। चलो नया विश्वास जगाएं, भारत का सम्मान बढ़ाएं, ज्ञान कर्म और नवाचार से, नया स्वर्णिम कल हम लाएं। हाथों में हो श्रम की ताकत, आंखों में हो नया विहान। युवा बड़े जब लक्ष्य की ओर, बढ़ता है पूरा हिंदुस्तान,

मित्रों, आज के दौर में सबसे बड़ी आवश्यकता है कौशल विकास। केवल डिग्री प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को व्यवहार में लाने की क्षमता होना भी जरूरी है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर युवा अपने कौशल को निखारे तो वह न केवल खुद के लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी अवसर बना सकते हैं। इसके साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि डिजिटल युग में जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही और गलत जानकारी में अंतर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया का उपयोग हमें ज्ञान और जागरूकता देने के लिए होना चाहिए, न कि समय की बर्बादी के लिए। आज का युवा पहले से अधिक जागरूक, तकनीकी रूप से सक्षम और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाला है, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं है। प्रतिस्पर्धा का दबाव, करियर की चिंता, सामाजिक अपेक्षाएं और बदलती जीवन शैली, ये सभी युवाओं के सामने नई चुनौतियां प्रस्तुत करती है। ऐसे समय में आवश्यक है कि युवा केवल सफलता के पीछे न भागे, बल्कि अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास करे। व्यक्तित्व विकास का अर्थ केवल पढ़ाई में अच्छा होना नहीं है, इसमें नैतिक मूल्यों का होना, सकारात्मक सोच रखना, असफलताओं से सीखना और निरंतर आगे बढ़ने का साहस शामिल है। असफलता से घबराना नहीं, बल्कि उसे एक सीख के रूप में स्वीकार करना ही सच्ची सफलता की पहली सीढ़ी है। सच ही कहा गया है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। मित्रों, राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का कार्य नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है और इसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। एक युवा अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़े बदलाव ला सकता है, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, स्वच्छता का ध्यान रखना, समाज में जागरूकता फैलाना और जरूरतमंदों की सहायता करना। ये छोटे छोटे कार्य मिलकर एक बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं। आज दुनिया सतत विकास की बात कर रही है, इसमें भी युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण, ये केवल विषय नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। अगर युवा इन मुद्दों को गंभीरता से ले तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। मित्रों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं हैं। इस विविधता में एकता बनाए रखना भी युवाओं की जिम्मेदारी है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आज आवश्यकता है युवा केवल मैं से ऊपर उठकर हम की सोच अपनाएं। जब तक हम केवल अपने बारे में ही सोचेंगे तब तक विकास सीमित रहेगा, लेकिन जब हम और देश के बारे में सोचेंगे तब विकास असीमित हो जाएगा। युवाओं को ये सोचना चाहिए, चलो मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे देश का नाम रोशन हो। चलो मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे देश का नाम रोशन हो। हर युवा बने एक मिसाल ताकि भारत का भविष्य उज्जवल हो, ताकि भारत का भविष्य उज्जवल हो। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, ऐसे में जो युवा समय के साथ खुद को बदलता है वही आगे बढ़ता है। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। इसीलिए युवाओं के लिए सबसे जरूरी है सही दिशा, सही लक्ष्य और सही प्रयास। अगर ये तीनों मिल जाए तो सफलता निश्चित है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। दुनिया को आज निरंतर आगे बढ़ता हुआ हिंदुस्तान नजर आ रहा है। इसका कारण केवल हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति नहीं, बल्कि हमारी युवा आबादी है। यह युवा शक्ति अगर कौशल, अनुशासन, नवाचार और नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़े तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, आज का समय विचारों की शक्ति का समय है। कभी सफलता केवल संसाधनों पर निर्भर मानी जाती थी, लेकिन आज सफलता का आधार है एक अच्छा विचार। इतिहास गवाह है कि दुनिया को बदलने वाले अधिकांश परिवर्तन किसी बड़े महल में नहीं, बल्कि एक छोटे से विचार से शुरू हुए। एक छोटा सा विचार ही तो किसी स्टार्टअप की नींव बनाता है।

हजारों युवा आज भारत में स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं। वे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में नए समाधान विकसित कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि नवाचार का अर्थ केवल तकनीक नहीं है। यदि कोई शिक्षक पढ़ाने का नया तरीका खोजता है, कोई किसान पानी बचाने की नई विधि अपनाता है, कोई छात्र समाज की किसी समस्या का सरल समाधान निकालता है, तो ये भी नवाचार है। इस तरह के नवाचार जीवन का स्तर बढ़ाने में मददगार होते हैं। यही सोच भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो और उसी पर कार्य करो, यही सफलता का मार्ग है। आज की युवाओं के लिए इससे बड़ा प्रेरक संदेश शायद ही कुछ और हो। इस संदेश को अपनाकर और आजमाकर ही युवा शक्ति अपने समाज, देश और अंततः समस्त विश्व की प्रगति के लिए नई राहें बना सकती हैं। इसके लिए उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। चलो नया इतिहास लिखे, हर सपने को आकार दे। चलो नया इतिहास लिखे, हर सपने को आकार दे। ज्ञान बने पहचान हमारी, मेहनत को आधार दे। हर चुनौती अवसर बन जाए, हर मुश्किल आसान बने। हर चुनौती अवसर बन जाए, हर मुश्किल आसान बने। युवा चले जब दृढ़ संकल्प से, भारत विश्व की शान बने। भारत विश्व की शान बने।

है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो प्रचंड बोल।

जीते की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।

0: युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने न दे। जीवन में सफलताएं पाने के लिए युवाओं को इसी तरह के सपने देखने और फिर उन्हें साकार करने के लायक बनने की आदत डालनी चाहिए। अगर युवा बड़े सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए अनुशासन के साथ कार्य करेंगे तो भारत का भविष्य और अधिक उज्जवल होगा, और इसके लिए युवा तैयार हैं क्योंकि उनके मन की आवाज है। नवाचार साझा करता हूँ हर पीढ़ी का नेतृत्व करने का, नवाचार साझा करता हूँ हर पीढ़ी का नेतृत्व करने का प्रयत्न करता हूँ, साहस रखता हूँ क्योंकि हर दिन एक स्वप्न देखता हूँ मैं, क्योंकि हर दिन एक स्वप्न देखता हूँ मैं, एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण का, एक सफल राष्ट्र के निर्माण का। आज का युवा हूँ मैं, आज का युवा हूँ मैं। युवा केवल उम्र नहीं, युवा एक सोच है जो बदलने का साहस करे, वही भविष्य की आवाज है। युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। जब युवा जागरूक, शिक्षित और जिम्मेदार बनता है तब देश प्रगति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ता है। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें, हम नवाचार को अपनाएंगे, हम नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाएंगे, हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे और एक नए सशक्त आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, युवा भारत, नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण विषय पर आधारित आज का यह विशेष कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आशा है कि इस चर्चा ने आपको यह समझने का अवसर दिया होगा कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचारी सोच, प्रभावी नेतृत्व और सकारात्मक दृष्टिकोण ही एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत की आधारशिला है। राष्ट्र निर्माण केवल सरकार या किसी एक संस्था का दायित्व नहीं, बल्कि हम सबका साझा उत्तरदायित्व है और इसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में हमारी वक्ता श्रीमती रीना त्यागी ने अपने विचारों के माध्यम से विषय के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। उनके सारगर्भित और प्रेरक विचारों के लिए हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, आकाशवाणी मुंबई के लिए। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजू कुमार भारती।
2: विविधा श्रोते हो कार्यक्रम आपण ऐकत होता। हा कार्यक्रम आपण ऐकला आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवरून।

0: अरे सुन तो।
1: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
0: किसको?
1: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
0: अच्छा ये बात है।
1: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
0: अब तो झट से बात हो जाती है।
1: ऐसा क्या?
2: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
1: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
0: हाँ।
1: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
3: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
4: सात असता मेघदूतची चिंता मिटली हवामानाची, माहिती कृषी आणि पशुधनाची नांदी होईल कृषी वलांची। आजच डाउनलोड करा मेघदूत ऍप, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग नवी दिल्ली आणि ग्रामीण कृषी मौसम सेवा कोल्हापूर यांच्या मार्फत जनहितार्थ जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: मंडळी, कार्यक्रमात आता वेळ झाली आहे निरोप घेण्याची, तेव्हा आता इथंच थांबूया, पण जाता जाता आपण जाणून घेऊया आमच्या उद्याच्या कृषीविषयक कार्यक्रमांविषयी। उद्या सकाळी कृषी वार्ता या कार्यक्रमात जनावरांमधील बाह्य परजीवींचं नियंत्रण याविषयी आपण माहिती ऐकू शकाल, हा या माहितीचा दुसरा भाग आहे। तर उद्या संध्याकाळी 7:30 माझं शेत माझं शिवार अंतर्गत शेतकऱ्यांची आवड हा कार्यक्रम आपण ऐकू शकाल। तर मंडळी, आकाशवाणी कोल्हापूर केंद्रावरच्या कृषीविषयक कार्यक्रमांचा आपण जरूर लाभ घ्या, पण आता मात्र कार्यक्रमात इथंच निरोप द्या। पुन्हा भेटूया उद्या संध्याकाळी 7:30 माझं शेत माझं शिवार या कार्यक्रमात। तोपर्यंत सायली चौधरीचा नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह

0: ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर

0: स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो यह केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह हुड्डा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी संपन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान

0: के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
2: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गांवों में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए हैं और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian president says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure.

केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है।

0: जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है। केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की पत्रिका के संपादकीय में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैचारिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी एक रूढ़ी, डॉगमा या संकीर्ण विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा, व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे आंतरिक और आध्यात्मिक धरा

बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा, व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है बल्कि उसे आंतरिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी परम स्वतंत्र बनाता है। आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आजादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर ही अधिक जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के चरम लक्ष्य और उसके लोक परलोक के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता शब्द दो पदों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र, जिसका अर्थ है अपने तंत्र या अपने नियम के अधीन होना। यहाँ स्व का अर्थ व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहां वेदों को परम प्रमाण मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन है, तो वहीं वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से है। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के बृहद उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम् का उद्घोष सामाजिक स्वतंत्रता और समता का एक ऐसा ही प्रमाण है जो सभी को अपने साथ चलने, साथ बोलने और सभी के मनों को समान रूप से समझने के भाव पर केंद्रित है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सामूहिक चेतना के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर संवाद को कितना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार भारत ही नहीं विश्व में समादृत रामचरितमानस के उत्तर कांड से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जहां राज्याभिषेक के बाद राम प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मुहि बर जहु भय बिसराई, जिसका अर्थ है कि वही मेरा सच्चा सेवक है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। हे भाई, यदि मैं कभी कोई अनुचित या अनीति बात कह दूं, तो तुम सारा भय भुलाकर मुझे टोक देना। अपने शुद्ध विचार को निर्भीक भाव से रखना ही भारतीय चिंतन धारा का

0: स्वतंत्रता चिंतन या स्वातंत्र्य बोध है, क्योंकि भारतीय मनीषा एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति की विश्वासी है। आज जब दुनिया में अपने विचार को ही एकमात्र सत्य मानकर दूसरों पर थोपने की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब भारतीय ज्ञान परंपरा का यह मूल्य हमें सह अस्तित्व, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक विमर्श की वास्तविक राह दिखाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस स्वातंत्र्य बोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे मतदान का अधिकार है। बाजारवादी संस्कृति ने उसे अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने की असीमित आजादी भी दी है। वह समाज, प्रकृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बिखराव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्वार्थ सिद्धि प्रमुख है, स्व का बोध या स्वातंत्र्य बोध का विचार यहाँ दूर दूर तक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस एकांगी स्वतंत्रता के स्थान पर एक पूरक और समग्र स्वतंत्रता मॉडल प्रस्तुत करती है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और प्रकृति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक पर्यावरण चेतना और सतत विकास का मूल मंत्र भी यही कहता है कि हमारी उपभोग की स्वतंत्रता तब तक ही न्यायसंगत है जब तक वह दूसरों के अस्तित्व और प्रकृति के संतुलन को खतरे में न डाले। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता का मूल्य अत्यंत व्यापक, गहन और शाश्वत है। यह काल और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है। विश्व को यह समझने की आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है तो उन्हें स्वतंत्रता की केवल बाहरी व कानूनी अवधारणाओं तक ही सीमित रहने के बजाय भारतीय चिंतन धारा के चेतना और कर्तव्य आधारित स्वतंत्रता मूल्य को आत्मसात करना होगा।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता के मूल्य, इसी विषय पर आज के संपादकीय में अभी आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक को। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वो हमें केवल उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न करने का साहस भी देती है, और शायद यही किसी भी जीवंत संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। साहस अज्ञानता के विरुद्ध प्रश्न करने का हो या किसी अन्याय के विरुद्ध। हमारे देश में ऐसी प्रबुद्ध और साहसी आवाजों की कमी कभी नहीं रही।
2: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम।
1: आज जब हम भारत की आजादी की कहानी याद करते हैं तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े आंदोलन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उभरती हैं। लेकिन आजादी की ये कहानी सिर्फ उन्हीं नामों की नहीं थी, ये उन अनगिनत स्त्री पुरुषों की भी कहानी थी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक आवाज को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज।
3: चौदह जनवरी 1902, दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। लेप्चा समुदाय के एक परिवार में जन्मी हेलेन उनके माता पिता की 7 संतानों में तीसरी थी। बाद में उनका परिवार करसियांग आ गया, वो पहाड़ी इलाका जहां चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी। कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, मगर पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917, पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से

0: प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918 में वो कलकत्ता पहुंची। चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत काटना सीखा। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920। बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था। हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेपचा राहत कार्यों में जुट गई निस्वार्थ भाव से लगातार। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को करीब से देखा। यहीं गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो, वो सत्ता को भला कैसे सुहाती? ब्रिटिश सरकार की निगाहें अब उन पर थी। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए वो इलाहाबाद पहुंची और कुछ समय आनंद भवन में रही। वहां उनका संपर्क कांग्रेस के कई नेताओं से हुआ, लेकिन पहाड़ उन्हें पुकार रहे थे। वो वापस करसियांग लौटी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में जुट गई। घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान, ब्रिटिश प्रशासन की पाबंदियां और उनके सामने एक दृढ़ निश्चय, वो पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलेन लेपचा गिरफ्तार कर ली गई। दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर करसियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा। सन 1939 और 40, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करसियांग में नजरबंद थे। हेलेन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
1: मैं दिलीराम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
2: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलेन लेपचा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने झारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीने तक, बाद में 3 वर्षों तक खरसांग में जब उनको नजरबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खरसांग में नजरबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान की भेष तैयार करने में हेलेन लेपचा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलेन लेपचा मेडिकल कॉलेज निर्णय लिया है।
3: मैं सोमनाथ पांडे, सिक्किम से। मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूँ। हेलेन लेपचा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवार जन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर वगैरह ताम्र पत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल्स पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस प्रश्न में हम लोग खोज करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलेन लेपचा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को देखा, दवाई औषधियां किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। तब ये तब वो बड़ा स्वाभिमानी, वो एक तो निडर माता के रूप में परिचित है। उनका 3 नाम है। एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलेन लेपचा था। बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा, अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी, तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। तब उनका गांव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका

0: नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है। तब साइली करके थर्ड करके साइली दीदी करके ऐसा नाम उस प्रसिद्ध हुई। तो उनको ताम्रपत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम के, लेकिन वो थोड़ा सा समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्र में ही काम किया तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है। सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो और उनका कई रास्ता का नाम हेलेन लेप्चा का नाम से अभी बन रहा है।
1: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्रपत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलेन लेप्चा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
2: हेलेन लेप्चा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

0: स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और कविताओं में लड़ी गई। और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।
1: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम।
2: जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थी स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
3: I believe that I must disprove the age-old proverb that the woman has the last word and the longest word. I have the last word, no doubt, not because I am a woman, but because I'm acting today as the hostess of the Indian National Congress.
2: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी, कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग, धैर्य, समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है।

0: 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। वो केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्रा की और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति और स्वाभिमान की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। इसी आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी, तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
1: This is the Congress radio calling on 42.34 meters. Today we shall read to you a stupid reasoning of the CNC.
0: सुचेता किपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बाद में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं।
2: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया के आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करें, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए आप महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीपशिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है। कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था।

किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और डिजिटल युग में भी वो पढ़ने, शोध और विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंचने की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। भारत की आदिवासी परंपराएं अपनी भाषाओं, लोक कथाओं, संगीत, नृत्य, कला और प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, वीएस गायतोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा। इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री शहनाई की प्रारंभिक शिक्षा श्री रंगाचारी काकंडिकी से प्राप्त की। उसके बाद श्री चन्वीर बन्नूर के मार्गदर्शन में लगातार 9 वर्ष तक शहनाई वादन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री चन्वीर बन्नूर डॉक्टर पंडित पुटराज गवाई के प्रमुख शिष्य थे। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जैसे कि कलाश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार इत्यादि। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री देश विदेश के कई प्रमुख संगीत सम्मेलन में अपना शहनाई वादन प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's national program of music, we bring you a Shahnai recital by Shri Gyirimallappa Bhajantri. Shri Gyirimallappa Bhajantri started his initial training in Shahnai from Shri Rangachari Kakandiki. Later, for 9 years, he was under the able guidance of Shri Channaveera Bannur, a prominent disciple of Pandit Puttaraja Gavayi of Gadag. Shri Gyirimallappa Bhajantri is a recipient of many awards, like Kalashri Award, Karnataka Rajyotsava Award, etc. He has performed in many important music festivals of India and abroad.

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री, आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: That was राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री विल नाउ प्रेजेंट राग जोग।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: दैट वॉज राग जोग। With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Malesh Hugar Desai Kallur.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

0: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और एनएफएसयू फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वॉल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई, राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan.
1: लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।